आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है, FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 जुलाई सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हुए हैं। हम आरंभ करते हैं हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

0: आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। एफएम 102, एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को है दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार, अब आप सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत की राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने यह बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई

0: है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। एफएम 102, एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही न्यूज ऑन AIR और ऑल इंडिया रेडियो लाइव मोबाइल ऐप पर भी। आइए भक्ति संगीत अर्चना आपको सुनवाएं।

भक्ति संगीत अर्चना सुनने वाले सभी श्रोताओं का आत्मिक अभिनंदन। श्रोताओं, यह बिल्कुल सत्य वचन है, प्रातःकालीन भजनों की पवित्र ध्वनि और ईश्वर का स्मरण पूरे दिवस के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा भर देता है।

खाली हाथ होने का आभास व्यक्ति को अंत समय भासता है कि उसने भौतिक तिजोरी तो भर ली, लेकिन कर्म और नाम सुमिरन की आध्यात्मिक तिजोरी पूरी तरह रीति रह गई।

ईश भजन सुनते समय मन व्याकुल हो जाता है कि ईश्वर के दर्शन किस भांति हो। जब सुर और शब्द मिलकर हृदय को छूते हैं तो संसार का पर्दा कुछ समय के लिए अवश्य हट जाता है और अवश्य ही मन ईश्वर के दर्शन के लिए लालायित हो उठता है।

श्रोताओ, ये था आज का भक्ति संगीत अर्चना। इसमें स्वर दिए लता मंगेशकर, देवकी पंडित, रविंद्र जैन, हेमलता, पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र ने।

भक्ति संगीत अर्चना अभी आपने सुना। आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। आइए श्री रामचरितमानस गान आपको सुनवाएं। आज इसमें मुख्य स्वर ए हरिहरण का, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का।

अयोध्या में श्री राम के अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। संध्या समय हर्षित मन से महाराज दशरथ कैकेयी के महल में पहुंचे, किंतु वहां रानी के कोप

भवन में होने का समाचार सुनते ही सहम गए। आशंका ने उनके पांव बांध लिए। जिनकी भुजाओं में इंद्र का बल है, राजे जिनका मुंह जोहते रहते हैं, वही राजा पत्नी के क्रोध की कल्पना करके सूख से गए। आशंकित अवस्था में वो रानी के पास पहुंचे, जो मोटे मलिन वस्त्र धारण कर भूमि पर लेटी थी, आभूषण शरीर से उतार फेंके थे। राजा ने रानी से रूठने का कारण पूछा। उसे रुष्ट करने वाले मनुष्य तो क्या देवताओं का भी विनाश कर देने का वचन देते हैं। अपना वचन निभाने के लिए श्री राम की सौगंध उठाते हैं। राजा के वचन तथा राम की सौगंध का विचार कर रानी उठकर गहने पहनने लगी, जैसे कोई वन्य कन्या मृग को देखकर उसके लिए फंदा तैयार करने लगी हो। राजा पुलकित हुए और अगले दिन राम को युवराज पद देने का शुभ समाचार सुनाया। ये सुनकर कैकई के कठोर हृदय में ऐसी टीस उठी जैसे किसी ने पका हुआ फोड़ा छू दिया हो।

0: ए हरिहरण के मुख्य स्वर में आज का श्री रामचरितमानस गान आपने सुना। ये संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। आइए श्रोताओ, अब सुनवाएं चिंतन में आज की लघु वार्ता मनुष्यता। डॉक्टर प्रेमलता पालीवाल का ये वाचन है।
1: जो चिंता मनुष्य को विक्षिप्त करती है और भगवान से दूर रखती है, वही दुष्ट

0: चिंता है। मन में स्थान न पाने से उनके द्वारा तुम्हें शांति प्राप्त नहीं होगी। यही कोशिश करना कि मन में भगवान का राज्य हो, भगवान का स्मरण हो, भगवान की ही भावना हो। तुम्हारा सारा भार भगवान के ऊपर है, इस विश्वास को लेकर सरलता और मन की स्फूर्ति में रहने की कोशिश करना, यही वही मनुष्य है। दूसरे प्राणियों से मनुष्य का पार्थक्य यही है कि मनुष्य में एक विशेष प्रकार की शक्ति है जिसके द्वारा वो पूर्णता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के लिए यह शरीर कहता है कि जैसे मन का होश हुआ है, जिसे मन का होश हुआ है वही मनुष्य है। जिसे मन का होश नहीं, विषय वासना में तन्मय रहता है, उसे क्या मनुष्य कह सकते हैं? दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, एक मुहूर्त वृथा न जाए। हरि कथा ही कथा और सब व्यर्थ व्यथा। वृक्ष लता पशु पक्षी भी कुछ दिन संसार में रहकर पुनः नदी वृक्ष लता पशु पक्षी की सृष्टि करके संसार से विदा लेते हैं। तुम लोग भी यदि वही करो तो और प्रभेद क्या हुआ? जिससे रिटर्न टिकट काटना न पड़े उसकी कोशिश करना। जन्म जन्मांतर के सैकड़ों कर्म मनुष्य के अज्ञात अगम्य हैं। मनुष्य जन्म भाग्य के जन्म की सफलता है। मनुष्य जन्म भाग्य के जन्म की सफलता है। उनकी कृपा से ही मनुष्य जन्म सुकृति के फल से ही यह जन्म प्राप्त हुआ है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इसीलिए मनुष्य जन्म में मनुष्यत्व जागृत की दिशा ग्रहण करनी चाहिए। मनुष्य स्वाधीन गति के अभाव से कर्म क्षेत्र में पंगु हो जाता है। धर्म क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है। अपनी अपनी चिंताओं का प्रसार न मिलने से साधक की साधन चेष्टा संकुचित हो जाती है। अतएव जो जिस मार्ग पर अग्रसर हो रहा है, जो जहां जिस क्रिया को कर रहा है, उसी मार्ग में, उसी क्रिया में, उसी कर्म में शुद्ध भाव की परिपुष्टि लाभ करने के लिए अपने अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करें। जब लक्ष्य प्राणमय हो जाएगा तब जिसको जो आवश्यक हो आप ही आप हो जाएगा।
1: मनुष्यता। श्रोताओ, इस विषय पर आज का ये था विषय चिंतन में। वार्ताकार डॉक्टर प्रेमलता पालीवाल। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत

श्रोताओ, आज सुबह 7 जुलाई की है। आज दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको दे दें। आज मंगलवार है। आज सुबह 8:15 बजे आप सुनेंगे स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। इस कार्यक्रम में आज का विषय होगा महिलाओं में निसंतानता के कारण और उपचार। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर अरुणा अग्रवाल। आप सभी श्रोता कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए इस टेलीफोन नंबर का प्रयोग कर सकेंगे। टेलीफोन नंबर है 29411 42, एसटीडी कोड 0744। तो कार्यक्रम का समय याद रखिएगा 8:15 से 9 बजे तक। कार्यक्रम सुनने के दौरान आप फोन भी कर सकेंगे। बहिने अपना कार्यक्रम घर आंगन सुन सकेंगी 9:30 से। बरसात से पहले घर की देखभाल, इस विषय पर चर्चा होगी इसी कार्यक्रम में। और वनों और पेड़ पौधों के संरक्षण में महिलाओं का योगदान, ये जानकारियां एकत्रित करके लाई गई हैं, इस कार्यक्रम में आप सभी सुन सकेंगे। इसी के अलावा लाडू प्रोत्साहन योजना पर भी ग्रामीण बहनों को जानकारी दी जाएगी अपने कार्यक्रम।

0: घर आंगन में। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे 12 बजे से 12:30 तक। हमारे युवा साथी अपना कार्यक्रम शाम की सभा में 5 बजे से 6 बजे तक सुनेंगे। युवा साथियों के लिए आज इस कार्यक्रम में आज का संवाद होगा, जिसका विषय है प्रतिकूल परिस्थिति में भी हार न माने मेरी प्रेरणा। इसके तहत सम्राट हर्षवर्धन आज का विषय होंगे। विज्ञान धारा के तहत आर्टेमिस 2 के बारे में हमारे युवा श्रोता जान सकेंगे। नॉलेज कॉर्नर के तहत पद्म विभूषण पंडवानी गायिका तीजन बाई को श्रद्धांजलि स्वरूप जानकारी हमारे युवा साथियों को होगी। इसके अलावा पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जन्मतिथि और कैच द रन अभियान के बारे में हमारे युवा साथी जानकारी ले सकेंगे। रोजगार सूचना इसमें होंगी और मनोरंजन के लिए गीत संगीत भी होगा। हमारे ग्रामीण किसान भाई चौपाल कार्यक्रम सुन सकेंगे शाम 7 बजे से। जैविक खेती पर इस कार्यक्रम में चर्चा होगी, भेंट वार्ता इसमें आज हमारे श्रोता सुन सकेंगे। भंडारित लहसुन का रखरखाव और लहसुन की प्रोसेसिंग कैसे करें, इस विषय पर डॉक्टर गीतिका शर्मा ये जानकारी देंगी। जानकारी होगी पीएम मत्स्य संपदा योजना पर और नवीन कृषि सूचनाओं के बारे में भी हमारे ग्रामीण श्रोता जानकारी ले सकेंगे। और गीत संगीत भी होगा हमारे किसान भाइयों के लिए। राजस्थानी लोक संगीत हमारी शाम की सभा में 7:30 से 8 बजे, चित्रपट संगीत शाम की ही सभा में, फिल्म संगीत 9 बजे से 10 बजे तक, ये भी शाम की ही सभा में। तो फिर सुबह की सभा में फिल्म संगीत कब होगा? 7:30 पर और 9:10 पर। हाँ, एक और कार्यक्रम फिल्म संगीत का शाम की सभा में 6:05 पर। तो श्रोता, ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण के तहत चंबल चैनल का ये प्रसारण है। संस्कृत में समाचार थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे। उसके बाद जब हम लौटेंगे तो आप सुनेंगे सुबह सवेरे का कार्यक्रम नमस्कार कोटा 7 बजे से। अब प्रतीक्षा दिल्ली केंद्र की संस्कृत समाचारों के लिए।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य जकार्तायां इण्डोनेशिया देशस्य प्रधान राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यमुना सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। प्रधानमंत्री श्री मोदी राष्ट्रपति प्रबोवो इत्यस्य आह्वानेन तत्र त्रिदिवसीय आधिकारिक प्रवासे ह्यः एव जकार्ता नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रागमने तावत् इण्डोनेशिया वायुसेनायाः युद्धक विमानैः प्रधानमन्त्रिणः विमानस्य गगनमार्गे संरक्षणं कृतम्। सहैव विमानपत्तने राष्ट्रपतिना स्वयमुपस्थाय तस्य विशेषं भव्यं च स्वागतं विहितम्। एतादृशम् अभूतपूर्वम् अभिनन्दनम् अवलोक्य प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् इयं वार्ता 18-2000 वर्षादारभ्य भारत इण्डोनेशिया व्यापकरणनीतिक सहयोगाय कञ्चन नूतनं वेगं प्रदास्यति। जकार्तायां प्रदर्शितानि मनोरञ्जक सांस्कृतिक प्रदर्शनानि श्लाघयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् एतानि प्रदर्शनशिल्पानि भारत इण्डोनेशिया देशयोः प्राचीन सभ्यतायाः संस्कृतेः आध्यात्मिक सम्बन्धानां च प्रगाढतां प्रतिबिम्बयन्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा तत्र इण्डोनेशिया छात्राणां समन्वय समूहेन कृतं भरतनाट्यनृत्यमपि भृशं प्रशंसितम्। स्वस्य विश्रामभवने प्रवासी भारतीयैः सह मिलित्वा तेन रामायणकथाधारितं प्रसिद्धं वायाङ्गकुलित छायाखटपुतली प्रदर्शनं बौद्धिक भक्तिनृत्यञ्च अवलोक्य महान् हर्षः प्रकटितः। इण्डोनेशिया देशे भारतीय राजदूतस्य संदीप चक्रवर्तिनः अनुसारं प्रधानमन्त्रिणः अयं प्रवासः दक्षिणपूर्व एशियायाः अस्याः बृहत्तमायाः अर्थव्यवस्थायाः

0: साकं भारतस्य रणनीतिक सम्बन्धान् उच्चतर शिखरं प्रापयिष्यति। ध्यानार्हं वर्तते यत् प्रधानमन्त्रिणः अस्य त्रिदेशीय इण्डो पैसिफिक प्रवासस्य एतत् प्रथमं चरणमस्ति। अतः परं सः अस्मिन्नेव सप्ताहान्ते ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैण्ड देशयोः अपि भ्रमणं विधास्यति। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासेन सामान्य सचिवस्य चम्पतरायस्य न्यास सदस्यस्य डॉ अनिल मिश्रस्य च त्यागपत्रे स्वीकृतम्। कथितेन राम मंदिर दान वंचन प्रकरणे तयोः नाम प्रकाशात् परं उभौ त्यागपत्रं प्रदत्तवन्तौ। कृष्णमोहनः नवनियुक्ति पर्यन्तम् अन्तरिम सामान्य सचिव रूपेण नियुक्तः। तस्य परिवादे कथित दान अनियमिततायाः प्रकरणे एफआईआर इत्यस्य पंजीकरणम् अभवत्, यस्मिन् अष्ट जनाः निगडिताः। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः बहरीन देशे तत्रत्येन नरेशेन हमद बिन ईसा अल खलीफा इत्यमुना साकं शिष्टाचार मेलनं विहितवान्। सहैव द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढीकर्तुं प्रमुख चर्चाः अपि साधितवान्। विदेशमंत्री कतरदेशस्य यात्रां परिसमाप्य स्वस्य उपसागरीय देशानां चतुर्देशीय प्रवासस्य द्वितीय चरणे बहरीन नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रावसरे सः बहरीन देशे निवसद्भिः प्रवासी भारतीयैः सह वार्तां साधितवान्। भारतर्तुविभागेन अद्य गुजरात सौराष्ट्र कच्छ मध्य महाराष्ट्र तटीय कर्नाटक प्रदेशेषु अतिवृष्ट्या सह प्रचण्ड वृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। आगामि दिनद्वयोः दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ पंजाब बिहार छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश उत्तराखण्ड आन्तरिक कर्नाटक मध्यप्रदेश विदर्भ उपहिमालयी पश्चिम बंग सिक्किम राज्येषु प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति विभागेन पूर्वानुमानितम्। अण्डमान निकोबार द्वीपेषु आन्ध्रप्रदेशे गांगेय पश्चिम बंग प्रदेशे अरुणाचल प्रदेशे असमराज्ये मेघालये छत्तीसगढ़े नागालैण्डे मणिपुरे मिजोरम राज्ये त्रिपुरा राज्ये च अग्रिमेषु त्रिषु चतुर्षु दिनेषु मेघगर्जनेन सह विद्युद्योतनं झंझावातः च भविष्यति इत्यपि विभागेनोक्तम्। फुटबॉल क्रीडायां स्पेन देशेन गतरात्रौ डलास क्रीडांगणे राउंड ऑफ 16 क्रीडायां पोर्चुगल देशः 1-0 इत्यंकान्तरालेन पराजित्य फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्यचक्रे स्थानं सुरक्षितम्। स्पेन इदानीं शुक्रवासरे लॉस एंजलिस क्रीडांगणे यूएसए बेल्जियम वा देशं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोता ट्यून है आप FM 102, FM 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्स पर लेकर उपस्थित हैं सुबह सवेरे का कार्यक्रम जिसका नाम है नमस्कार कोटा।

नमस्कार श्रोताओं, सुबह सवेरे के इस अलबेले फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। माफ कीजिएगा, फोन इन तो होगा 8:15 बजे, जिसका नाम है उत्तम स्वास्थ्य। और ये कार्यक्रम है नमस्कार कोटा, जिसे मैं आज पेश कर रहा हूँ राजेश महावर अपनी पूरी टीम के सहयोग से। तो श्रोताओं, आज कुछ बात विद्या की करें, विद्या जो हमें धनवान बनाती है। कहते हैं विद्या रूपी धन सभी धनों में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे प्रधान है। एक प्राचीन संस्कृत श्लोक से एक विचार लिया गया श्रोताओं, वो ये है कि विद्या ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। कहा जाता है न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इसका अर्थ यूं है, अविनाशी यानी इसे कोई चुरा नहीं सकता, ये अछूत्य है यानी कोई भी इसे बलपूर्वक नहीं छीन सकता, और अविभाज्य है ये यानी इसका

0: का कोई बंटवारा नहीं कर सकता। वो सुना है ना, अपने परिवार का कभी जब बंटवारा होता है तब भी इसे किसी के बीच बांटा नहीं जा सकता। श्रोताओ, इसकी भारहीनता भी है। यदि इसे कहीं हम ले जाएंगे तो ये कोई भौतिक वस्तु नहीं है कि इसे ले जाने में कोई शारीरिक भार या फिर थकान हमें महसूस हो, और अनंत वृद्धि इसकी होती रहती है। यानी कि सांसारिक धन खर्च करने से वो घटने लगता है, लेकिन विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है जो दूसरों को बांटने से यानी पढ़ाने से अभ्यास से हमेशा बढ़ता है। कुल मिलाकर ये सूक्ति ये बात कहती है कि सांसारिक संपदा यानी कि संपत्ति, सोना चांदी, हमारे घर के जो भी सामान है वो नष्ट हो सकते हैं, लेकिन अर्जित किया गया ज्ञान जीवन भर व्यक्ति के साथ रहता है और उसे सही निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। तो श्रोताओं, दिमाग के अंदर नॉलेज जाने के लिए संगीत का भी बेहद असर होता है, इस बात से भी कोई इनकार नहीं। तो फिर इस कार्यक्रम में संगीत का भी शुमार है ही।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

0: तो श्रोताओं, हम ये मांगते हैं इस प्रकृति से कि भी सनशाइन मिले और मिले रैन भी, और जिसका इंतजार भी हम बड़े समय से कर रहे हैं, लेकिन वक्त आने पर सब कुछ पूरा होगा। हमें धैर्य रखना चाहिए। श्रोताओं नमस्कार। कोटा सुबह सवेरे का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं चंबल चैनल पर।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: नमस्कार, कोटा सुबह सवेरे का यह है कार्यक्रम। श्रोताओं, बीते हुए कल की गलतियां जब होती हैं तो उसके जो कटु अनुभव होते हैं, उसके शिकार हम अगर हो भी जाएं, तब उससे भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और इससे हमें मानसिक शांति मिलती है। यही सफलता की कुंजी भी है। यदि हम पुराने असफलताओं में उलझे रहेंगे तो वर्तमान के अवसर हमारे हाथ से निकलते रहेंगे। कहने का अर्थ यह है कि जो गलतियां हमसे जीवन में हो जाती हैं, उनसे हमें सीख लेना चाहिए और उन गलतियों को सीख में परिवर्तित कर लेना चाहिए। हालांकि ये थोड़ा सा परेशान करने वाला होता है, लेकिन इसके लिए भी हमें नॉलेज की जरूरत होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है। और वो ज्ञान अगर कोई व्यक्ति हमें दे तो उसे अवश्य लेना चाहिए, वो भी बिना किसी हिचक के, बिना किसी झिझक के। श्रोताओं, पिछली घटनाएं हमारे जीवन में अगर हमें नाकाम बनाए तो उसे नाकामी नहीं बल्कि एक सबक के रूप में हमें अपनानी चाहिए। आपने चाणक्य नीति के बारे में सुना होगा। चाणक्य नीति के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो बीती बातों पर पछताने के बजाय भविष्य की योजनाएं बनाता है, है ना? मानसिक तनाव से मुक्ति कैसे मिले, ये प्रयास हमें करना चाहिए। पुरानी बातों को बार बार सोचने, यानी वो एक शब्द है ना, ओवर थिंकिंग, उससे मानसिक ऊर्जा व्यर्थ होती है और इसे छोड़ने से हम तनाव मुक्त महसूस करेंगे स्वयं को। तो फिर वो चीज छोड़ दी जाए जो हमें तनाव दे और तनाव मुक्ति का हर प्रयास किया जाए। श्रोताओं, हमें वर्तमान में जीना चाहिए। वर्तमान में हम तब जी सकेंगे जब हम उस वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करेंगे, अपने आप को फोकस करेंगे वर्तमान पर। श्रोताओं, जो समय बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज के हमारे जो कर्म हैं उसी से अपने भविष्य को हम संवार सकते हैं। और अपने भविष्य को बेहतर कैसे बनाया जाए, यही तो हम प्रयास करते हैं, है ना? श्रोताओं, हमें सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। नई शुरुआत करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, उत्साह का होना जरूरी है। पुरानी नकारात्मक जो भी हमारे दिमाग में यादों की लकीरें बन गई हैं, यादों की परतें हैं, उन्हें मिटाकर सकारात्मक आदतें हमें अपनानी चाहिए। वो जैसे हमारी त्वचा पर जो ऊपर परत आ जाती है और फिर हम उसे साफ करते हैं तो अंदर से नवीन त्वचा हमें नजर आती है और वो प्रसन्नता देती है। बिल्कुल यही नयापन हमें प्रसन्नता हमेशा देगा। श्रोताओं, बात यह है कि हम तकदीर में हमारे क्या है, आगे क्या लिखा है, ये हम नहीं जानते। तो हमें वो काम करना चाहिए जिसे हम जान सकें।

0: जो भी है।
1: तो बात बिल्कुल साफ है कि जो भी है वर्तमान है, यही एक पल है, क्योंकि वर्तमान में हम उस पल को जी रहे होते हैं जिसमें श्वास लेते हैं। श्रोताओ, श्वास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारी इस श्वास को यथावत रखने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जो हमारे सैनिक होते हैं वो सीमा पर डटे रहते हैं कि हमें अपनी श्वास का संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो सके। श्रोता, यकायक से ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको भी याद होगा कैप्टन विक्रम बत्रा नाम। श्रोताओ, आज है 7 जुलाई साल 1999 जब कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी जान दी इस देश के नाम। भारतीय सेना के जाबाज अधिकारी कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें करगिल युद्ध में असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया, उन्हें युद्ध के दौरान उनके कोड नाम शेर शाह और करगिल का शेर इस रूप में जाना जाता था। उनका प्रमुख मिशन 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन बत्रा ने सबसे पहले रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पॉइंट जो 5140 थी उस पर जीत हासिल की, और उसके बाद उन्होंने खतरनाक पॉइंट 4875 जो कि अब विक्रम बत्रा टॉप कहलाता है, उसे दुश्मन से मुक्त कराने का नेतृत्व भी किया था। श्रोता, उनका प्रसिद्ध कथन था, युद्ध का उनका नारा था, ये दिल मांगे मोर। उनका ये संकल्प अत्यधिक प्रसिद्ध है कि मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। श्रोताओ, आज 7 जुलाई है, साल 1999 में उन्होंने अपनी शहादत दी। पॉइंट 4875 पर भीषण गोलाबारी के बीच अपने घायल साथी को बचाते हुए मात्र 24 वर्ष की आयु में कैप्टन विक्रम बत्रा वीर गति को प्राप्त हुए। कैप्टन विक्रम बत्रा, एक भारतीय वीर जिन्होंने देश की अखंडता के लिए अपने प्राणों को अपने शरीर से जुदा कर दिया। श्रोताओ, हमें अपने वीर सैनिकों की कुर्बानी को जाया नहीं जाने देना चाहिए। जो भी सैनिक हमें दिखाई देते हैं उनका हमें हृदय से सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो हैं तो हमारा ये देश सुरक्षित है।

0: जैसे विक्रम बत्रा ने वादा किया था, मैं आऊंगा जरूर, चाहे तिरंगे में लिपट कर आऊं। वैसे ही एक खबर है श्रोताओं, मणिपुर के उखरुल जिले में सोमवार को असम राइफल्स के काफिले पर उग्रवादियों ने हमला किया। हमले में वारंट ऑफिसर बलवंत सिंह और राइफलमैन सीएम सिंह शहीद हो गए। घटना के बाद हालांकि सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है, लेकिन वो सैनिक भी तिरंगे में लिपटकर एक बार फिर से आएंगे। श्रोताओं, जहां भी सैनिक हमें दिखाई दें, उनका सम्मान हमें अवश्य ही करना चाहिए।
1: पीछे भी जाने न तू,
0: क्योंकि वक्त यही है। श्रोताओं, हम जरा भावुक हो गए हैं क्योंकि बात शहीदों की है। चंबल चैनल पर सुबह सवेरे का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, नमस्कार कोटा। श्रोताओं, हमने कैप्टन बत्रा की बात की, आइए एक और बात करें महेंद्र सिंह धोनी की, जिन्हें प्यार से कैप्टन कूल और थाला कहा जाता है। भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल कप्तानों और महानतम क्रिकेट कीपरों और बल्लेबाजों में से एक हैं महेंद्र सिंह धोनी। आज 7 जुलाई 1981 के साल की बात है, रांची झारखंड में इनका जन्म हुआ। अपनी असाधारण मैच फिनिशिंग क्षमताओं और दबाव में भी वे शांत रहने के कारण इस नाम से मशहूर हुए, कैप्टन कूल। श्रोताओं, धोनी के नेतृत्व में भारतीय टीम ने अभूतपूर्व सफलताएं हासिल की। वो दुनिया के एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी की तीनों प्रमुख ट्रॉफियां जीती, 2007 आईसीसी टी20 विश्व कप, 2011 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, 2013 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्होंने अपने कैप्टन कूल उपनाम को कानूनी रूप से ट्रेडमार्क भी करवा लिया है। धोनी अपने शांत स्वभाव, बिजली की गति से स्टंपिंग करने और बल्लेबाजी में मैच को अंत तक ले जाने की कला यानी फिनिशिंग स्किल्स के लिए विश्व भर में अभी तक जाने जाते हैं। 7 जुलाई जो आज है, साल 1981 में उनका जन्म हुआ, आज उन पर बनी एक फिल्म का एक गीत आपको सुनवाते हैं,

तो श्रोताओ, दुनिया में जो अपने परिश्रम से, अथक मेहनत से बहुत आगे बढ़ने वाले, प्रेरणा देने वाले काम करते हैं, उन्हें हम सबको प्यार करना ही चाहिए। श्रोताओ, अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रेम दिवस आज है। हर साल 7 जुलाई को मनाए जाने वाले इस अनूठे दिवस की शुरुआत बीटल्स बैंड के प्रसिद्ध ड्रमर रिंगो स्टार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में की गई थी, जो लोगों को शांति, प्रेम और सकारात्मकता का संदेश को साझा करने के लिए प्रेरित करता है। और हमें अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, इसीलिए आज का दिन मनाया जाता है। श्रोताओ, अब चलते चलते मौसम की भी कुछ बात कर लें। कोटा शहर में कल सोमवार को मौसम का मिजाज जरा बदला बदला सा रहा। बादल छाए रहे, बीच बीच में धूप भी निकली और उससे उमस भी रही। गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिली, लेकिन शाम होते होते शहर में कुछ बूंदाबांदी हुई और कुछ क्षेत्र में रिमझिम बरसात भी हुई। मौसम विभाग ने कोटा समेत आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश नहीं होने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज भी की गई। कोटा का अधिकतम तापमान 1 डिग्री बढ़ गया है और ये 37.4 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 1 डिग्री बढ़कर 28 डिग्री सेल्सियस रहा। तो श्रोताओ, कुछ अच्छे के आसार में हम इंतजार करें, मगर अच्छे अच्छे काम भी हम करते रहें। तो आज की ये बातें श्रोताओ अब खत्म होती है, क्योंकि कार्यक्रम अपनी समाप्ति पर है। वो जब ये शब्द निकला कि समाप्ति पर है, मगर इसका अर्थ ये हुआ कि अभी तक कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ। तो एक और बात चलते चलते आपसे कहें श्रोताओ, कोटा शहर में आस्था के प्रमुख केंद्र और सांस्कृतिक पहचान की बात हो तो हम याद करते हैं पुराना हमारा शहर का एक केंद्र भीतरिया कुंड, जिसे चंबल नदी के किनारे लगभग 300 वर्ष पूर्व एक मंदिर के निकट बसाया गया है। यहाँ पूजा पाठ होती है, अर्चना होती है, भक्ति की जाती है कोटावासियों के द्वारा। यहाँ की जो भावनाएं हैं वो परंपरागत हैं और स्मृतियों में गहरी छाई हुई है। श्रोताओं, पीढ़ियों से धार्मिक आयोजन यहाँ होते हैं। पर्व त्योहार पर इस केंद्र में हम लोग जाते हैं, कोटावासी वहां जाकर दिव्य अनुभूति करते हैं। तो भीतरिया कुंड अब अपनी मूल गरिमा को बनाए रखते हुए अपने नए स्वरूप को विकसित करने के लिए जा रहा है, विकसित हो रहा है। लेकिन हमें अपनी कुछ आदतों में सुधार करते हुए एक काम जरूर करना होगा, वो ये कि इसके नए स्वरूप को हमें बरकरार रखना होगा। वहां पर गंदगी नहीं करनी होगी और सुरक्षित रखना होगा उस क्षेत्र को। तो श्रोताओ, ये एक बात भी थी कि हमें आपसे कहनी थी कि हम गंदगी कभी ना फैलाएं और जो सरकारी नियम है, सरकारी व्यवस्था है, उनका इस्तेमाल करते हुए गंदगी को जितना कम हो उतना कम करते चले जाएं और इस तरह हम अपने पूरे शहर को स्वच्छ कर सकेंगे। तो श्रोताओ, बातें ऐसी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती, मगर समय के अनुसार उन्हें थामना चाहिए। तो श्रोताओ, चलते चलते अब आपको ये कहें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग निहाल सिंह का था, साथ उनका दिया KS मीणा ने, और इस कार्यक्रम का संयोजन तेजराम मीणा का था। तो अब राजेश महावर भी आपसे चाहता है अनुमति, कहता है नमस्कार कोटा, स्वीकार कीजिए इस कार्यक्रम में चलते चलते नमस्कार।

नमस्कार कोटा श्रोताओं, चंबल चैनल पर सुबह सवेरे का ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे। आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। आज का पहला गीत फिल्म पतिता से। मूड एकदम बदला तो आपको भी अच्छा लगेगा। आपको बता दें ये दो आवाजें हैं हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की, शब्द हसरत जयपुरी के, और ये संगीत शंकर जयकिशन का।

पतिता फिल्म से पुराना गीत आपने सुना, हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें थी। श्रोताओं कार्यक्रम का अगला गीत यह है।

सलील चौधरी का ये संगीत था। मधुमती फिल्म से मुकेश और लता मंगेशकर की ये आवाजें आपने सुनी। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप अवश्य सुनेंगे, मगर उसके पहले कार्यक्रम के बारे में एक जानकारी आपको दे दें। उत्तम स्वास्थ्य कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8:15 बजे से। आज इसमें विषय होगा महिलाओं में निसंतानता के कारण क्या हैं और उपचार क्या हैं। इस विषय पर विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर अरुणा अग्रवाल हमारे साथ होंगी और आप सभी श्रोता फोन कर सकेंगे इस टेलीफोन नंबर पर कार्यक्रम पर विषय पर आधारित। टेलीफोन नंबर है 29411142, एसटीडी कोड 0744। तो श्रोताओं, सुनिएगा जरूर कार्यक्रम और फोन भी कीजिएगा, इस कार्यक्रम को आपके लिए ही पेश किया जाएगा।

0: परवरिश फिल्म से ये दो गाना आपने सुना। संगीत दत्ताराम वाडकर का था और ये शब्द हसरत जयपुरी के थे। लता मंगेशकर मन्ना डे की आवाजें थी।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा।
0: ये आवाज मोहम्मद रफी की। इनका साथ इस गीत के लिए आशा भोसले दे रही हैं। एक मुसाफिर एक हसीना, ये नाम है फिल्म का। राजा मेहदी अली खां के शब्द हैं और ये संगीत है OP नैयर का। और ये पूरा गीत कुछ यूं है।

मखमली आवाज सुनकर बड़ा सुकून मिलता है श्रोताओं। संगीत भी मखमली ओपी नैयर का, एसएच बिहारी के शब्द बहारें फिर भी आएंगी फिल्म का ये गीत जिसे मोहम्मद रफी ने गाया था। कार्यक्रम का अंतिम गीत है ये।

20 साल बाद। श्रोता, इस फिल्म का ये गीत था हेमंत कुमार की आवाज में, कैफी आजमी के शब्द और हेमंत कुमार का ही ये संगीत था। श्रोता, आज के फिल्म संगीत में हम आशा करते हैं कि आपको गीत, संगीत और आवाजें बेहद पसंद आई होंगी। कार्यक्रम के बारे में आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं हमें आप अवश्य बताइएगा। व्हाट्सएप है 95301 2020 और ईमेल आईडी है enjoyairkota@gmail.com। चंबल चैनल का

0: श्रोताओं, चंबल चैनल का ये प्रसारण है। थोड़ी देर में यानी 8 बजे आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात। उसके बाद जब आप लौटेंगे तब आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। आज का विषय इसमें होगा महिलाओं में निसंतानता के कारण और उपचार। आज की विशेषज्ञ डॉक्टर अरुणा अग्रवाल हमारे स्टूडियो में हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं आप सभी श्रोताओं के लिए और समय की। सुनेगा जरूर 8:15 बजे। अब चलते हैं दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात के लिए।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे, व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम, मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
4: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
3: इंडोनेशिया में भारत

0: भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
1: India and Indonesia are very close and strategic partners. We are
2: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
1: प्राइम मिनिस्टर्स विजिट विल रीइंफोर्स दैट ट्रेंड।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉ जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉ जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉ जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले पांच वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये पांच साल में किया है।
0: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
3: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम सीएससी की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने

0: एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6वें स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्स फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमरीका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे

0: मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व आईएफएस अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट पीजी परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR और ऑल इंडिया रेडियो लाइव मोबाइल ऐप पर भी। श्रोताओं, लेकर उपस्थित हैं आज का स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारी विशेषज्ञ अतिथि हैं डॉक्टर अरुणा अग्रवाल जी। आइए पहले उनकी वाणी आप तक पहुंचा दें। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्कार
2: जी। श्रोताओं, बस इस वाणी के साथ आज का ये कार्यक्रम शुरू होगा, मगर आगाज करते हैं कुछ इस तरह।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर, 11 जवाहर नगर कोटा, फोन नंबर 2422526 और 2431217। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व स्तरीय RC100 अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से 2 बार सम्मानित डॉक्टर ML अग्रवाल, अवसाद या अन्य मानसिक विकारों से अपना हो परेशान, वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर ML अग्रवाल करेंगे इसका समाधान। साथ ही छोटे जीने द्वारा बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और समस्त प्रसूत एवं स्त्री रोगों के इलाज और परामर्श की बात है तो डॉक्टर अरुणा अग्रवाल आपके साथ हैं। 24 घंटे रोगियों की देखरेख में तत्पर अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर।
2: तो श्रोताओं, कार्यक्रम आगाज करें उसके पहले कुछ बातें आपसे ये कहें कि महिलाओं को सृष्टि का आधार माना गया है, ये बात आप मानते होंगे, और महिलाओं में जीवन को संभालने की, परिवार को संभालने की और समाज को दिशा देने की अद्भुत क्षमताएं होती हैं। श्रोताओं, इसी गरिमा, इसी त्याग और इसी विशेष योगदान के कारण हमारे देश में महिलाओं को उच्च सम्मान प्राप्त है और सम्मान दिया जाना भी चाहिए। श्रोताओं, सृजन और पालन पोषण, परिवार और समाज की धुरी के रूप में महिलाएं हैं। बहुकार्य क्षमता करने की उनकी जो शक्ति है, इसके अलावा त्याग और समर्पण यानी परिवार की खुशी और सफलता के लिए महिलाएं अक्सर अपने कई सपनों को, अपनी कई इच्छाओं का भी त्याग कर देती हैं, और यही बात महिलाओं के महान चरित्र को दर्शाती है। इसलिए श्रोताओं, हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। यह केवल नैतिक कर्तव्य नहीं है हमारा, बल्कि एक भारत जो हमारा देश है उसके विकसित सुसंस्कृत और शांतिपूर्ण समाज की निर्माण के लिए पहली शर्त भी यही है कि हम महिलाओं का सम्मान करें। कहते हैं, जहां नारी का सम्मान होता है वहां सकारात्मकता होती है, वहां समृद्धि हमेशा बनी रहती है। और आज स्टूडियो में भी इसी तरह हमारे समक्ष बैठी हैं डॉक्टर अरुणा अग्रवाल।

0: आप बहुत वरिष्ठ हैं। अगर मेडिकल की बात करें तो 56 वर्षों से भी अधिक वर्षों का अनुभव अपने साथ लिए चंबल चैनल के स्टूडियो में हैं और आज के विषय पर आधारित आपसे मुखातिब हैं। 68 में MBBS किया था डॉक्टर अरुणा अग्रवाल जी ने और आज भी बिल्कुल उतनी ही तत्पर रहती हैं कि किसी भी तरह की किसी को कोई समस्या न आए। तो आज का जो विषय है महिलाओं में निसंतानता, उसके कारण क्या हैं, उसका उपचार क्या है, इस विषय पर हमने आपकी वाणी तो सुनी ही ली है लेकिन आगे का कार्यक्रम अब जारी रखते हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है आपका।
1: धन्यवाद
0: जी। डॉक्टर साहिबा, ये जो बातें हमने कही कि महिलाओं का सम्मान वाकई में होना चाहिए, पुरुषों के द्वारा भी और महिलाओं के द्वारा भी होना चाहिए, हमारे ग्रामीण परिवेश में अक्सर संस्कृति के अभाव में कुछ महिलाओं को विवाह के पश्चात कुछ तकलीफें देखने को मिलती हैं, उसकी कुछ बातें अगर आप हमारे श्रोताओं को कहना चाहें वो अवश्य कहिए, क्योंकि एक जो महिला होती है जो अपनी बहू के आने के बाद एक सास का पद निभाती है, उन्हें भी अपनी उन तकलीफों को स्मरण रखना चाहिए जब वो बहू बनकर उस घर में प्रवेश कर चुकी थी।
1: जी हाँ, देखिए इस तरह की जो प्रॉब्लम्स बहुओं को आती हैं वो एक समाज की एक खराबी मान लीजिए, क्योंकि जैसा चलता आ रहा है वो ही आगे चलता है। मतलब कि वही वाली बात है कि सास भी कभी बहू थी, तो जब वो बहू थी तो उसने जो तकलीफें सही थी, जो परेशानियां उनके रोजाना के रोजमर्रा के कामों में आती थी, तो वो उनको वो भुला नहीं पाती थी। और अगली बार जब उनकी बहू आती थी तो वो उस पर भी उन्हीं को अप्लाई करती थी,
0: हिसाब बराबर करने की कोशिश करती
1: थी। हिसाब बराबर नहीं, मतलब वो ये, मैं तो ये कहूंगी कि वो ये सोचती थी कि ये हमारी रीति है
0: जी।
1: ऐसा करना ये एक रीति है, क्योंकि हमारी सास ने भी हमारे साथ ऐसा किया था तो हमें भी करना चाहिए, इन बातों से सीख मिलती है। तो वो ऐसा सोचकर इस तरह का होता था और उसी में कभी कुछ कड़वाहट हो जाती थी, कभी कुछ स्वाद बन जाता था, तो वो सब चीजें चलती थी
0: जी।
1: तो इन सब चीजों को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है।
0: जी, आपने बताया कि इन चीजों को एक्सेप्ट करने के बाद में हमारी शक्तियां और बढ़ जाती हैं।
1: जी
0: सहन शक्ति हम में और आ जाती है जी। तो सहन शक्ति महिलाओं में ईश्वर ने बहुत ज्यादा दी है, क्योंकि जब नव जीवन को वो जन्म देती हैं तब वो असहनीय पीड़ा सहती हैं और ये पीड़ा सहने का जो सहन शक्ति है वो महिलाओं में ही ईश्वर ने दी है। और एक आज का जो विषय है वो ये है कि जो महिलाएं अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए संतान उत्पत्ति का एक सपना देखती हैं, मगर वो सपना उनका किसी वजह से अधूरा रह जाता है, यानी निसंतानता उनके जब परिवार में होती है तब उन्हें ही वो तकलीफ जब नहीं मिलती है तब वो बड़ी परेशान हो जाती हैं। तो आज हम निसंतानता ये क्यों होती है, इस पर आपके अनुभव साझा करना चाहेंगे हमारे तमाम श्रोताओं के साथ। तो आरंभ में तो हम आपसे यही पूछेंगे कि महिलाओं में जो निसंतानता आ जाती है ये एक तरीके से अप्राकृतिक एक स्थिति है, तो इस स्थिति से बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? क्या हम ये माने कि महिलाओं में निसंतानता उस वजह से आती है कि उनकी वजह से किसी तरह की कोई कमी हो जाती है अपने खान पान में, अपने रहन सहन में, या किसी और वजह से?
1: जी, ऐसा है कि निसंतानता यूजुअली हम उसको कहते हैं कि जब करीब करीब एक वर्ष या उससे ज्यादा पति पत्नी साथ रहते हैं और उनके संबंध बने रहते हैं, तो इतना एक साल से भी ज्यादा हो जाने के बावजूद भी अगर वो कंसीव नहीं कर पाती है, मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, और इसमें शर्त यह है कि वो कोई प्रेगनेंसी रोकने का سادھن استعمال نہیں کرتی اس دوران. تو اگر ان پروٹیکٹڈ سیکس ہوتے ہوئے اگر سال بھر کے اندر وہ کنسیو نہیں

0: नहीं कर पाती हैं तो उसको हम इनफर्टिलिटी ही मानते हैं और उसके बाद ही हम उनका इलाज चालू करते हैं
1: जी।
0: या कारण खोजने की कोशिश करते हैं
1: जी।
0: तो निसंतानता हम इसको ही कहते हैं कि अगर एक वर्ष तक पति पत्नी साथ रहते हैं और कोई कंट्रासेप्टिव यूज नहीं करते हैं तो उस समय में भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है तो फिर हम उसको निसंतानता मानते हैं और उसके लिए फिर उसके इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं
1: जी। यानी कि वैवाहिक दंपत्ति जब अपने परिवार को बढ़ाना चाहें और उन्हें किसी तरह की शारीरिक समस्याएं जब आती हैं, आज खासतौर पर हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, तब उनकी जो समस्याएं हैं आज उनका उपचार आपके माध्यम से होगा, उनको सलाह आपके माध्यम से दी जाएगी। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में जो विषय है वो आपको समझ आया ही है, महिलाओं में निसंतानता की हम बात कर रहे हैं। ऐसे में यदि आपके भी कोई प्रश्न हो तो टेलीफोन नंबर है चंबल चैनल के स्टूडियो का 29411 42 और एसटीडी कोड 0744। न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर सुनते सुनते या फिर FM या फिर मीडियम वेव पर आप सुनते सुनते अपने प्रश्न कर सकेंगे आज की हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर अरुणा अग्रवाल जी से जी। तो डॉक्टर साहिबा, इसका पहला कारण हम क्या मान सकते हैं कि मुख्य कारण इसका क्या हो सकता है अगर हम खासतौर पर महिलाओं की ही बात करें?
0: देखिए, महिलाओं की बात करते हैं तो हम इसमें पुरुष को नहीं भूल सकते, क्योंकि जो प्रेगनेंसी होती है या जो संतान हम कहते हैं बात करते हैं तो उसमें आधा रोल तो पुरुष का भी होता ही है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते, कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम पुरुष में होती है और हम सारा कुछ ध्यान केंद्रित महिलाओं पे कर देते हैं
1: जी, जी।
0: तो जब हम इसका ट्रीटमेंट या समझिए कि इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि पुरुष के भी सीमन का टेस्ट करवाते हैं
1: जी। सबसे पहले
0: हाँ, मतलब महिला के टेस्टों के साथ साथ पुरुष के भी टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि अगर प्रॉब्लम कहीं पुरुष में है तो फिर हमें महिला के ऊपर ट्रीटमेंट करने का कोई मतलब नहीं होता
1: जी, जी, जी।
0: तो दोनों ही स्वस्थ होने चाहिए, मतलब महिला के भी सारे इन्वेस्टिगेशन सही होने चाहिए और पुरुष के भी सही होने चाहिए। तो उसके बाद हम ये मान के चलते हैं कि भाई ये एक साल से साथ रह रहे हैं फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो इसका मतलब अब हमें इसका ट्रीटमेंट पे आगे चलना पड़ेगा
1: जी।
0: तो थोड़ा सा ये जो प्रोसीजर होता है प्रेगनेंसी होने का वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है कि उसका कुछ समय होता है, मतलब कि आप देखिए एक महिला के शरीर में दो ओवरीज होती हैं
1: जी, जी।
0: और एक यूट्रस होता है और दो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं तो
1: जी।
0: इन सबका काम आता है प्रेगनेंसी होने में
1: जी।
0: तो अंडा जो होता है वो ओवरी में बनता है
1: जी।
0: ओवरी में पकता है और फिर ओवरी से ही वो फूटता है
1: जी।
0: और ओवरी से फूट के वो फैलोपियन ट्यूब के द्वारा यूट्रस में आता है। इस दौरान अगर फैलोपियन ट्यूब के अंदर उसे स्पर्म से कांटेक्ट हो जाता है
1: जी।
0: तो वहां पर फर्टिलाइजेशन हो सकता है, हो जाता है और उसके बाद वो ही फर्टिलाइज्ड ओवम यूट्रस में आके सेटल हो जाता है और फिर वो ग्रो करने लग जाता है
1: जी।
0: तो इस प्रोसीजर के दौरान कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे अंडे बनने में प्रॉब्लम है या अंडा पकने में प्रॉब्लम है या अंडा फूटने में प्रॉब्लम है या उसके बाद अंडे का फेलोपियन ट्यूब में आने में प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो हमको ये सब देखना पड़ता है कि अंडा बन रहा है या अंडा फूट रहा है, समय से फूट रहा है और फिर उसके बाद उसको प्रेगनेंसी उसके बावजूद भी नहीं हो रही है तो कारण ढूंढना पड़ता है।
1: बिल्कुल, ये आपने पूरी एक प्रक्रिया बताई।
0: हाँ।
1: इस प्रक्रिया में कहीं भी किसी तरह का अवरोध होता है तब हमें उसके आगे कारण ढूंढने की तरफ चलना पड़ता है
0: जी।
1: डॉक्टर साहिबा, आपकी बातें हमारे श्रोताओं को बिल्कुल शब्दशः समझ में आ रही हैं ऐसा हम मानते हैं। एक श्रोता हमसे जुड़े हैं
0: जी।
1: नमस्कार।
2: जी भैया, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
1: योगेश जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका, और आपने फोन

0: किया, आपने धैर्य रखा, उसके लिए हम आपको नमन भी करते हैं। जी अपना प्रश्न कीजिए।
1: ये कहना चाहते हैं कि जो पति पत्नी के बीच में जो एक उम्र का ज्यादा गैप होता है, ये भी एक कारण होता है क्या? और महिलाओं में मानसिक तनाव भी एक कारण होता है क्या?
0: दोनों आपके प्रश्न। जी
2: जो भी आपका प्रश्न है तो उसमें उम्र का जहाँ तक सवाल है तो महिलाओं में एक उम्र होती है जिसको हम 20 साल से लेके 35 साल तक, इस दौरान उनकी फर्टिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उनके अंडे वगैरह बनते हैं और फूटते हैं। लेकिन 35 साल से ज्यादा की उम्र की जो महिलाएं होती हैं उनमें अंडे बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाती है। तो जहां तक महिला की उम्र का सवाल है मैंने बता दिया 20 साल से 35 साल, लेकिन पुरुष की उम्र का इसमें कोई व्यवधान नहीं आता। अगर

0: उम्र का जहां तक सवाल है तो महिलाओं में एक उम्र होती है जिसको हम 20 साल से लेके 35 साल तक, इस दौरान उनकी फर्टिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उनके अंडे वगैरह बनते हैं और फूटते हैं। लेकिन 35 साल से ज्यादा की उम्र की जो महिलाएं होती हैं उनमें अंडे बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाती है। तो जहां तक महिला की उम्र का सवाल है मैंने बता दिया 20 साल से 35 साल, लेकिन पुरुष की उम्र का इसमें कोई व्यवधान नहीं आता। अगर पुरुष की उम्र कितनी भी है लेकिन अगर उसके स्पर्म ठीक है, स्पर्म का जो टेस्ट होता है वो करवाया जाता है, और अगर वो हेल्दी हैं तो उनकी उम्र कोई मायने नहीं रखती।
1: ठीक है
2: जी, धन्यवाद। जी, जी, और इसका भी जवाब देते ही जो तनाव के बारे में,
0: तनाव
1: जी
0: देखिए तनाव जो होता है वो उसकी वजह से जो महिला के अंदर अंडा बनता है उसके लिए जो हार्मोन आपका हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है उस पे थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, तो इसलिए तनाव रहित रहे तो ठीक रहता है। बाकी अगर बहुत ही ज्यादा तनाव है तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है।
1: जी
2: बहुत शुक्रिया
1: योगेश जी, आपके ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे कि तनाव नहीं होना चाहिए। वाकई में ये बात सही है और डॉक्टर साहिबा ने भी इस चीज के लिए अपनी सहमति दी है कि तनाव मुक्त हमें होना ही चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहिबा तनाव रखने से हमारे शरीर की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में वो अवरुद्ध होती है कहीं ना कहीं।
0: हाँ बिल्कुल, इफेक्ट होती हैं।
1: इफेक्ट होती हैं जी। जी डॉक्टर साहिबा, आप व्यवस्थाएं बता रही थी कि शारीरिक संरचना महिलाओं की क्या है, कि हमें वो साइकिल आपने बताया, उस साइकिल में अगर कहीं कोई अवरोध हो जाता है तब फिर हम अपने कारण ढूंढने की एक जो खोज है वो शुरू कर देते हैं।
0: हाँ देखिए, ऐसा है कि महिलाओं की जो मासिक चक्र होता है
1: जी,
0: वो यूजुअली 28 दिन, 30 दिन, 32 दिन इतने का होता है।
1: ये सभी का अलग अलग होता है?
0: सभी का अलग अलग होता है।
1: या घटता बढ़ता भी रहता है?
0: नहीं, घटता बढ़ता रहता है वो सही नहीं होता।
1: जी जी,
0: मतलब अगर किसी का 28 दिन का चक्र है तो बराबर वो 28 दिन के आसपास ही होना चाहिए, एक या दो दिन आगे पीछे हो सकता है
1: जी।
0: किसी का 35 दिन का है तो 35 दिन का रहना चाहिए
1: जी।
0: मतलब ऐसा नहीं, अगर किसी का कभी 28 है कभी 35 है तो वो हम उसमें हार्मोन की गड़बड़ मानते हैं,
1: अनियमित
0: हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि जो ये अंडा फूटने का, पकने का ये जो प्रोसीजर होता है उसमें ये होता है कि एक मासिक चक्र से लेके दूसरे मासिक चक्र के बीच में जो 14th, 15th, 16th डे होते हैं इनमें जाके अंडा फूटता है। उससे पहले वो पकता है और उसके बाद वो फूटता है। तो जिस समय ये पीरियड होता है यही पीरियड होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है, मतलब कि और पीरियड मासिक धर्म के जस्ट बाद का और जस्ट पहले का वो पीरियड थोड़ा फ्री होता है, उसमें प्रेगनेंसी यूजुअली नहीं होती है
1: जी,
0: क्योंकि उस समय अंडा बनता है, पकता है और फिर वो फूटता है, और फूटने के बाद फिर उसके बाद भी अगर वो सही है तो उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती है।
1: आपकी बात से ये समझ में आता है कि दो मासिक के बीच का जो समय है वो एक उपयुक्त समय है।
0: बीच का भी 4-5 दिन का पीरियड होता है
1: जी,
0: जिस समय में कि अंडा फूटता है
1: जी। डॉक्टर साहिबा, हमारे श्रोता आपकी बातें समझ रहे हैं और प्रश्न भी करेंगे। श्रोताओं, टेलीफोन नंबर है 29411 42, एसटीडी कोड 0744। एक छोटे से अंतराल की बारी।
3: विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व स्तरीय आरसी हंटर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से 2 बार सम्मानित डॉक्टर एमएल अग्रवाल, अवसाद या अन्य मानसिक विकारों से अब ना हो परेशान, वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर एमएल अग्रवाल करेंगे इसका समाधान। साथ ही छोटे चीरे द्वारा बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और समस्त प्रसूति एवं स्त्री रोगों के इलाज और परामर्श की बात है तो डॉक्टर अरुणा अग्रवाल आपके साथ है। 24 घंटे रोगियों की देखरेख में तत्पर अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर, 11 जवाहर नगर कोटा, फोन नंबर 2।

0: 2425226 और 2431217।
1: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट एवं श्री जी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल झालावाड़ रोड कोटा।
2: दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है,
3: आपसे है हमारा दिल का रिश्ता, क्योंकि हमारे लिए है हर जिंदगी अनमोल। हमारे यहाँ 24 घंटे हृदय रोग विशेषज्ञों द्वारा इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध हैं। हाथ के नस द्वारा एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश जिंदल की अगुवाई में सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी टीम और गंभीर जानलेवा बीमारियों के लिए समर्पित विशेषज्ञ डॉक्टर्स, सघन नवजात गहन चिकित्सा इकाई, लैप्रोस्कोपी दूरबीन पद्धति से पथरी रोग, हर्निया, पेट रोग, महिला रोग और मोटापे का संपूर्ण इलाज, बच्चेदानी का ऑपरेशन, निसंतानता की संपूर्ण जांच एवं इलाज। आपसे है हमारा दिल का रिश्ता, क्योंकि हमारे लिए है हर जिंदगी अनमोल।
2: दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है।
4: श्रोता एक बार बहुत बहुत स्वागत फिर से आपका। डॉक्टर साहिबा, आपका भी बहुत से अभिनंदन करते हैं फिर से, क्योंकि आपने अभी तक की जो बातें बताई वो बिल्कुल ऐसे है कि हमारे श्रोता समझ रहे हैं कि अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कहां किस तरह की तकलीफें उनको आती हैं, उससे दूर होने का वो प्रयास कर सकेंगे, आपकी बातों से वो जान सकेंगे। डॉक्टर साहिबा, ये जो आपने बातें बताई हैं कि महिलाओं को इस तरह की जब समस्या आती तो ये करना चाहिए, लेकिन अपनी किसी तकलीफ को आगे बढ़कर महिलाएं कह नहीं पाती हैं, शर्म और संकोच का ऐसा बड़ा घेरा होता है उसमें महिलाएं रहती हैं, तो ये जो तकलीफें हैं उसमें उनका भी बड़ी भूमिका होती है, तो इसको कैसे वो डॉक्टर से सीधा संपर्क करने में अपने आप को किस तरह से वो तत्पर रखें।
5: देखिए, जब कोई तकलीफ होती है तो डॉक्टर से तो कोई बात भी छिपानी नहीं चाहिए
4: जी,
5: और सारी बातें ठीक से बतानी चाहिए, क्योंकि जब सारी बातें डॉक्टर सुनेगा समझेगा तभी तो आपका इलाज करेगा
4: जी।
5: तो इसलिए सारी बातें बतानी चाहिए। दूसरी बात क्या होता है कि कई बार कुछ मिथ्स होते हैं, जैसे किसी ने कोई भी दूसरी लेडी या कोई आपकी घर की बड़ी बूढ़ी या कोई भी जैसी बातें कह देती हैं दिमाग में, वो बातें घर कर जाती हैं
4: जी।
5: तो वो जो मिथ्स होते हैं उनको भी समाधान करने के लिए आपको डॉक्टर से बात तो करनी पड़ेगी ना।
4: वाकई, वाकई।
5: कि भाई ये जो कुछ लोग बात कहते हैं ऐसा ही होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कई महिलाएं ऐसे समझती हैं, कहती है भाई हमें तो ये बताया गया कि जस्ट आफ्टर पीरियड प्रेगनेंसी होती है, या किसी को ये मिथ होता है कि जस्ट बिफोर पीरियड प्रेगनेंसी होती है, लेकिन अगर हम बताएं तो वो दोनों ही पीरियड ऐसे होते हैं कि जिनमें प्रेगनेंसी नहीं होती है, वो बीच का पीरियड होता है जिसमें प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि जब अंडा ही नहीं मिलेगा तो प्रेगनेंसी कैसे होगी।
4: बिल्कुल।
5: तो मतलब कि ये कई महिलाएं हमारे पास आती हैं जो इस भ्रम से ग्रसित होती हैं कि प्रेगनेंसी किस पीरियड में होती है, तो उन्हें ये बताना बहुत जरूरी होता है कि नहीं इस पीरियड में होती है और आप इस पीरियड को अवॉइड ना करें
4: जी, जी।
5: तो अगर उनको जो उनके भ्रम है उनके मन में बैठा हुआ है उसको अगर हम दूर नहीं करेंगे तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम यही हो जाएगी।
4: बिल्कुल।
5: तो ये सब बातें उनको समझानी पड़ती हैं, और जब कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए शर्म को तो हटाना ही पड़ता है, दूरी रखना पड़ता है, आपको बात पूरी करनी पड़ेगी डॉक्टर से, अपने बारे में कुछ नहीं छिपाना चाहिए।
4: वाकई, क्योंकि ये शर्म और संकोच एक इस तरह की चीज है कि जो अभी जो इंटरनेट का जो मायाजाल है उससे वो जानकारी लेते हैं, वो जानकारियां भ्रामक भी हो सकती हैं, और आप जब विशेषज्ञ हैं तो उनसे पूछना इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होता है।
5: भ्रम जो भी हो उसके बारे में आपको डॉक्टर से क्लियर तो करना ही पड़ेगा ना
4: जी। अब डॉक्टर साहिबा, यहाँ पर ये बात जैसे आपने बताया प्रेगनेंसी का जो कारण होता है वो एक उपयुक्त समय होता है, कि आपने जो 5 दिन का एक लगभग समय बताया, महावारी के पहले और तुरंत बाद और तुरंत पहले, ये जो समय है अगर इस समय वो लोग प्रयास करते हैं तब ये रहता है कि जब सीमन महिला में प्रवेश जब करता है तब उसका जो समय है जीवित रहने का वो कब तक होता है।
5: वो तो देखिए, जो उसका जीवित रहने का समय तो 24 आवर्स मानते हैं कि भाई 24 आवर्स में अगर उसको अंडा मिल जाता है तो वो

0: तो वो फेलोपियन ट्यूब में इतनी जगह नहीं होती तो वो फेलोपियन ट्यूब फट जाएगी,
1: वो समस्या का कारण बन जाएगा। हाँ। जी जी, डॉक्टर साहब एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्ते सर।
1: जी नमस्कार, नाम बताएं साहब।
2: जितेंद्र बात कर रहा था सर।
1: हाँ जितेंद्र जी, प्रश्न कीजिए और अपनी जगह का पता भी बताइए।
2: ग्राम बाजर।
1: ग्राम बाजर से। जी कीजिए अपना प्रश्न।
2: डॉक्टर साहब से पूछना था सर, हमारे रिलेशन को एक पेशेंट है सर, जिनको एक सर उनके बच्चे नहीं है।
1: जी तो उन्होंने कहीं जांचें करवाई हैं?
2: जांचें भी करवाई सर, और उसके मासिक धर्म जाता है हर महीने प्रतिदिन।
1: जी
2: उनकी उम्र हो गई सर 30-31 साल हो गई।
1: जी सुनिए सुनिए डॉक्टर साहिबा। वो कह रही है कि मासिक भी आता है, उम्र 30-31 है, पर संतान उत्पत्ति नहीं है।
0: नहीं तो वो तो टेस्ट करवाइए ना, हस्बैंड का टेस्ट करवाइए, वाइफ के टेस्ट करवाइए, कहाँ गड़बड़ आई है ये पता चलना चाहिए ना। हाँ कहाँ पे गड़बड़ आई है, मतलब उनके मेल पार्टनर में गड़बड़ है या अंडा बनने में गड़बड़ है या अंडा फूटने में गड़बड़ है,
1: कुछ जांचें करवाई गई है क्या?
2: जांचें तो करवाई थी सर।
1: जी तो आप जान
0: क्या बताया गया?
1: हाँ बताया गया, क्या बताइए?
2: बोला गया था हमारे से हो जाएगा।
1: अच्छा सांत्वना दी गई थी।
0: नहीं तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तो होगी ही ना, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। तो आप अगर एक जगह कराया तो कहीं दूसरी जगह आप उसको टेस्ट को करवाइए सारे।
2: सर आपसे मिलना चाहते?
1: हाँ जी
0: हाँ, तो मिल सकते हैं,
1: बिल्कुल आप
0: कोई
1: मिल सकते हैं। शहर के जानी माने डॉक्टर आज चंबल चैनल के स्टूडियो में आपसे मुखातिब हैं और डॉक्टर साहिबा से भी मिलकर आप अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। तो श्रोता सुन रहे हैं आप सजीव फोन इन कार्यक्रम, भैया आपके स्वास्थ्य का इस कार्यक्रम को बहुत ख्याल है। कार्यक्रम का नाम उत्तम स्वास्थ्य और इसमें आज का विषय है महिलाओं में निसंतानता और कारण और फिर उसके उपचार के बारे में। आज हमारी अतिथि विशेषज्ञ डॉक्टर अरुणा अग्रवाल हमारे साथ हैं। टेलीफोन नंबर के जरिए आप सब इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं सीधे। टेलीफोन नंबर 29411 42, एसटीडी कोड 0744। थोड़ा सा अंतराल डॉक्टर साहिबा, उसके बाद फिर और बातें।
3: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट एवं श्रीजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल झालावाड़ रोड कोटा।
4: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं जायसवाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं न्यूरो इंस्टीट्यूट 1/28 विज्ञान नगर कोटा।
5: हाड़ौती में पहली बार लकवे के इलाज हेतु मस्तिष्क में रक्त के थक्के को पिघलाने वाली आधुनिकतम एवं एकमात्र टीपीए उपचार पद्धति युक्त स्ट्रोक यूनिट।
4: शुरुआती 4.5 घंटे में ही इस पद्धति से उपचार द्वारा लकवे से होने वाली आजीवन अपंगता से बचाव संभव।
5: लकवे के लक्षण शरीर के एक भाग में कमजोरी, चेहरे में टेढ़ापन, आवाज में लड़खड़ाहट, चलने में परेशानी, तुरंत संपर्क करें।
4: 24 घंटे अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय जायसवाल एवं स्ट्रोक टीम उपलब्ध। टेलीफोन नंबर 0744242322, मोबाइल नंबर 9928756522।
1: तो श्रोताओं एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहिबा आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन फिर से। और डॉक्टर साहिबा इतनी महत्व की बातें आप बता रहे हैं लेकिन ये जो विशेष शर्म और संकोच का है, जैसा कि कुछ महिलाएं तो बात कर ही नहीं रही लेकिन पुरुष भी बात करते हैं तो जरा संकोच के दायरे में होते हैं, ऐसे में ये हम पर ही दायित्व होता है कि हम उनका तमाम समाधान उन तक पहुंचाएं। तो डॉक्टर साहिबा आप ये अपने फेलोपियन ट्यूब में एक जो रुकावट है उस तक की बात की, उसके आगे भी जैसे जब गर्भाशय की बात आती है उसकी बनावट में भी क्या कुछ इस तरह की भिन्नता होती है कि गर्भधारण करने की समस्याएं उनको आ जाए?
0: देखिए वैसे तो यूजुअली तो जो यूट्रस होता है वो एक सिंगल ही होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ प्राकृतिक या जन्मजात विकृतियां होती हैं जिनमें कई बार जो यूट्रस होता है उसमें बीच में एक सेप्टम आ जाता है, मतलब वो दो भागों में बटा हुआ होता है, या उसमें जो लाइनिंग होती है बच्चेदानी की जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं वो बहुत डिफेक्टिव होती है, या वो मतलब बच्चे को संभालने के काबिल नहीं होती, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं यूट्रस में जिसकी वजह से बच्चा बार बार मतलब फर्टिलाइज होने के बावजूद भी वो डिस्कार्ड हो जाता है।

0: उसके लिए यूजुअली हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं
1: जी, जी.
0: तो हम उसको एक्स्ट्रा हार्मोन्स दिए जाते हैं जिससे कि कई बार आप सक्सेस मिल जाती है और बच्चा ठहर जाता है. तो वो देखना पड़ता है कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है. अगर और कहीं प्रॉब्लम नहीं है तो हो सकती है वो यूट्रस में हो. अगर उसमें सेप्टा होता है तो उस सेप्टा को कट किया जाता है, या अगर उसमें एंडोमेट्रियम अच्छी नहीं बनती है या जिसकी एंडोमेट्रियम अच्छी नहीं होती है तो उसको बढ़ाने के लिए हार्मोन्स के इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं
1: जी.
0: तो ऐसा करने से सक्सेस हो जाती है.
1: सेप्टा कट करना अगर है तो ये एक ऑपरेशन है.
0: हाँ, छोटा
1: छोटा सा ऑपरेशन है जी. एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, नमस्कार.
2: सर, मेरा पहले कॉल कट गया था और डॉक्टर को पता बोल रहा था.
1: हाँ, वो आपको बता दिया जाएगा जितेंद्र जी, है ना. आप रेडियो सुनते रहिए, आपको बता दिया जाएगा. बहुत धन्यवाद जी. कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं कि कार्यक्रम के मध्य में हम ये कुछ बातें नहीं बता पाते हैं. डॉक्टर साहिबा, आपने हार्मोन के असंतुलन की भी बात कही.
0: जी हाँ.
1: हार्मोन की जो संतुलन है ये किस तरह से महिलाएं बना के रख सकती हैं या किस तरह से वो समझ सकती हैं कि उनका हार्मोन गड़बड़ हो रहा है.
0: देखिए, ये तो कोई महिला खुद तो नहीं समझ सकती, ये तो डॉक्टर ही समझ सकता है कि प्रॉब्लम कहाँ है. क्योंकि अगर हार्मोन सही मात्रा में नहीं मिलते हैं
1: जी.
0: तो ये जो ये प्रोसीजर होता है वो गड़बड़ा जाता है
1: जी.
0: तो इसको जैसे कि अगर ओवरी में अंडा बनेगा नहीं
1: जी, जी.
0: इसका मतलब हार्मोन की गड़बड़ है.
1: हाँ.
0: तो अगर पकेगा नहीं तो भी हार्मोन की गड़बड़ है. तो इनको हमें हार्मोन देकर संतुलित करना पड़ता है जिससे कि अंडा बने और फूटे
1: जी. तो हेलो, हाँ जी, एक हलो? एक श्रोता हमसे जुड़ा ना. हाँ जी, नमस्कार.
3: नमस्कार सर.
1: जी साहब,
3: मैं झालावाड़ जिले से पिड़ावा तहसील से रामनिवास बोल रहा हूँ.
1: रामनिवास जी, स्वागत है आपका, प्रश्न कीजिए.
3: एक बार सर, मैं बोल रहा हूँ कि आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है
1: जी. शुक्रिया,
3: आपको धन्यवाद दे रहा हूँ.
1: अच्छा अच्छा, और बताइए.
0: धन्यवाद.
1: प्रश्न, हाँ जी, प्रश्न कीजिए.
3: मेरा प्रश्न ये है सर कि जब हमारे एक दंपति 60 साल की उम्र में उनको बच्चा हुआ.
1: 60 की में?
3: हाँ
1: जी.
3: तो मैम पूछ रही थी कि जब उनका अंडा बनना 40 की उम्र के अंदर ही बंद हो जाता है तो फिर कैसे हुआ उनके.
0: देखिए, ऐसा है कि वैसे तो यूजुअली अंडा बनना बंद आपका 50 की उम्र में, 45 से 50 की उम्र में बंद होता है. 35 की उम्र से वो अंडा बनना कम हो जाता है और धीरे धीरे 50 की उम्र तक जाते जाते वो बंद हो जाता है. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वन से वाइल कभी कोई अंडा बन जाता है. तो अगर इत्तफाक से उस समय कंसीव कर गई वो
1: जी, जी.
0: तो कर सकती है
1: जी.
0: लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता है.
1: ये कभी कभी ऐसा
0: कभी कभी कोई एक दो बार अंडा बन गया तो बन गया. हार्मोन वो ये तो बॉडी है. हार्मोन अगर किसी उसमें आ गए, संतुलन में आ गए और अंडा बन गया तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो जाए.
1: क्योंकि शरीर के भीतर व्यवस्थाएं तो वही होती हैं जी. डॉक्टर साहिबा, तो डॉक्टर साहिबा, जैसे कि कोई महिला कंसीव करती हैं, गर्भधारण करती हैं और वो यात्रा लगभग 9 महीने के समय की मानी जाती है, कंसीव करने से लेकर डिलीवरी तक किसी तरह का कोई व्यवधान इस तरह का आ जाए कि फिर से निसंतानता के दायरे में उस महिला को मान लिया जाए.
0: देखिए, ऐसा है कि अगर ऐसा एक बार हुआ कि भाई उसको प्रेगनेंसी हुई लेकिन दूसरे या तीसरे महीने में या चौथे महीने में अबॉर्शन हो गया
1: जी, जी.
0: तो ऐसा एक आध बार तो हो सकता है, हालांकि उसके भी कारण होते हैं. पर अगर ऐसा बार बार होता है और महिला पूरे 9 महीने तक बच्चे को नहीं पेट में पाल सकती है तो हम उसको भी एक तरह से निसंतानता ही बोलते हैं
1: जी.
0: तो उसका भी उसके भी कई कारण होते हैं क्यों ऐसा हो रहा है कि वो यूजुअली पहले दो तीन महीने में अगर ऐसा होता है तो वो ज्यादातर हार्मोन्स की कमी की वजह से होता है
1: जी.
0: क्योंकि हार्मोन बच्चे को यूट्रस में संभाल के रखते हैं और बच्चा भी उन्हीं हार्मोन के जरिए ही बड़ा होता है
1: जी.

0: लेकिन अगर 3-4 महीने के बाद ऐसा होता है तो उसमें फिर दूसरे कारण होते हैं
1: जी।
0: उसमें यूजुअली ये होता है कि बच्चेदानी का मुंह ढीला है या कोई बच्चे में खराबी है, उसमें कोई जन्मजात खराबी है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसकी वजह से अबॉर्शन होता है, मतलब मिसकैरियज होता है
1: जी डॉक्टर साहब।
0: हाँ तो वो उसका कारण अलग होता है, वो देखना पड़ता है, उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट करना पड़ता है
1: जी डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, आपने अभी तक की इतनी खास जानकारी बताई कि गर्भधारण अब हो गया, तो फिर महिलाओं को किस तरह से सुरक्षा रखनी पड़ती है और परिवार को उनका सहयोग कैसे करना चाहिए?
0: देखिए वैसे तो यूजुअली तो अगर नॉर्मली प्रेगनेंसी होती है
1: जी,
0: तो महिला को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है,
1: सब प्रकृति
0: सब कुछ प्रकृति करती है और सब कुछ ठीक होता है, अपनी नॉर्मल लाइफ वो जी सकती है, नॉर्मल रोजमर्रा के काम भी कर सकती है और आराम से 9 महीने निकल जाते हैं। लेकिन अगर उसको पहले से हिस्ट्री है कि उसको एबॉर्शन हुए हैं तो उस समय ये देखना पड़ता है कि किस कारण से एबॉर्शन हुआ है
1: जी।
0: या किस कारण से वो पूरी प्रेगनेंसी 9 महीने तक नहीं ले पा रही है, तो उस कारण का फिर निवारण करना पड़ता है कि भई क्या कारण है। कई बार क्या होता है, बच्चेदानी का मुंह ढीला होता है तो हम उसके मुंह को बंद करते हैं
1: जी।
0: या हार्मोन की कमी होती है या फिर बच्चे में कोई जन्मजात विकृति होती है, तो ये जो भी कारण होता है उसका ही निवारण करना पड़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, अब क्योंकि कार्यक्रम अपनी समाप्ति पर है, जो बहनें गर्भधारण करना चाहती हैं और उन्हें किसी तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो सामान्य व्यवस्थाएं क्या होती हैं? जैसे आप डॉक्टर होने की हैसियत से ये कहते हैं कि महिलाओं को गर्भधारण के पहले भी अपने खान पान का पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए, अपने शारीरिक व्यायाम का पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि वो योग्य हो जाए कि वो गर्भ धारण कर सकें, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: वैसे तो यूजुअली तो महिलाएं घर का इतना काम करती हैं कि उनको व्यायाम अलग से करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर हल्का फुल्का व्यायाम वो रोजमर्रा में करती हैं तो उनके शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। खान पान भी, ये अब पुराना जमाना तो रहा नहीं है कि खान पान महिलाओं को मिलता नहीं है
1: जी, जी।
0: तो उनको बराबर खान पान भी अच्छा मिलता है तो वो रखें, और फिर भी उसके बावजूद भी अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है तो सारे टेस्ट वगैरह करवाएं, खुद के करवाएं, हस्बैंड के करवाएं, और फिर जहां कमी हो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो मतलब कि इसको इग्नोर नहीं करें। आजकल कुछ महिलाओं में या बच्चियों में ये हो गया है कि भी शादी हुई है तो अभी 3 साल तक तो हमको बच्चा नहीं करना या 4 साल तक नहीं करना, लेकिन क्या होता है कि आजकल थोड़ी शादियां भी थोड़ी लेट होती हैं
1: जी।
0: तो एक जो मैंने आपको उम्र बताई कि 20 साल से लेकर 35 साल तक का टाइम होता है महिलाओं में
1: जी, जी।
0: जिस टाइम में सबसे ज्यादा फर्टिलिटी होती है, तो इस समय में अगर वो प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो सबसे बेस्ट रहती है। लेकिन अगर वो शादी 30 साल में कर रही है और फिर 3-4 साल वो ऐसे निकाल देती
1: है, हाँ
0: प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो उनके जो अंडे बनने की क्षमता है वो कम होती जाएगी
1: जी।
0: और उसके बाद उनको प्रेगनेंसी होने में भी दिक्कत आएगी।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, एक श्रोता है। हेलो, हाँ जी नमस्कार।
2: प्रेगनेंसी में लिंग की साइज का भी कोई रोल रहता है?
1: शारीरिक बनावट का ये बात कर रहे हैं कि पुरुषों की शारीरिक बनावट में भी कोई आवश्यकता होती है?
0: नहीं, देखिए शारीरिक बनावट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनको जो उनका इंटरकोर्स है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और सीमन डिस्चार्ज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बनावट कहीं नहीं आती
1: जी, कोई आड़े हाँ। नहीं आती जी, और प्रकृति ने सब कुछ बड़ा सुचारू बना रखा है जी। डॉक्टर साहिबा, आज आपकी बातें बड़ी महत्व की रही कि कोई परिवार है वो अपने परिवार को बढ़ाना चाहता है कोई दंपत्ति, तो उन्हें जिस तरह की समस्याएं आती है उसका समाधान आज आपने अपनी बातों के दरमियान बताया। आपके आकाशवाणी आने के लिए हम बहुत बहुत आभार।

0: करते हैं।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
2: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे जायसवाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं न्यूरो इंस्टीट्यूट एक का 28 विज्ञान नगर कोटा।
3: हाड़ौती में पहली बार लकवे के इलाज हेतु मस्तिष्क में रक्त के थक्के को पिघलाने वाली आधुनिकतम एवं एकमात्र टीबी उपचार पद्धति युक्त स्ट्रोक यूनिट।
4: शुरुआती 4.5 घंटे में ही इस पद्धति से उपचार द्वारा लकवे से होने वाली आजीवन अपंगता से बचाव संभव।
5: लकवे के लक्षण: शरीर के एक भाग में कमजोरी, चेहरे में टेढ़ापन, आवाज में लड़खड़ाहट, चलने में परेशानी। तुरंत संपर्क करें।
6: 24 घंटे अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय जायसवाल एवं स्ट्रोक टीम उपलब्ध।
2: टेलीफोन नंबर 07442423232, मोबाइल नंबर 9928756522।
0: तो डॉक्टर साहिबा, आज आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए, हम आपका पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं।
1: धन्यवाद
0: जी। श्रोता, ये कार्यक्रम आपने सुना उत्तम स्वास्थ्य। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग निहाल सिंह और के एस मीना का था। इस कार्यक्रम का संयोजन हिमांशु नामा ने किया और अब राजेश महावर भी आपसे चाहता है अनुमति। स्वीकार कीजिए, नमस्कार। चंबल चैनल का ये प्रसारण है। श्रोताओं, ट्यून इन है आप FM 102, FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 KHz पर। साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी। 9 बजने को हैं। अब जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे, आपसे भी प्रतीक्षा कीजिए।
7: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-2025 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। राज्य पुलिस के विशेष यातायात अभियान के तहत पहले 4 दिनों में 78,000 से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। और प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के कारण विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी। उदयपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान का साक्षी भी बनेंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां वे प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-2025 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और छात्रों को पुरस्कार वितरित करेंगे। विद्यार्थियों में संसदीय प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ये योजना छात्रों को संसद की कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं, चर्चा और बहस की तकनीकों से भी परिचित कराती है और उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और प्रभावी भाषण कला तथा कौशल विकसित करती है। 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में देश भर के 51 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने भाग लिया। देश के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से हो रही इस 2 दिन की कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच

0: एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का शुभारंभ किया जाएगा। ये मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं, पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देशभर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों तथा जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में बदलने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। करौली जिले में पांचना बांध से समझौते के अनुसार सिंचाई के लिए नहरों में पानी का प्रवाह कल फिर से शुरू कर दिया गया। इस बीच देर शाम आई तकनीकी खामी के कारण कुछ देर प्रवाह बाधित रहा। हालांकि जल संसाधन विभाग, एसडीआरएफ और विशेषज्ञों की टीमों ने पूरी रात तकनीकी खराबी को दूर कर प्रवाह सुचारू किया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से आज सुबह जारी बयान के अनुसार तकनीकी समस्या वाले गेट को आज तड़के खोल दिया गया, जिसके बाद नहरों में जल प्रवाह सामान्य हो गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान राजस्थान में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों नेताओं के बीच राज्य में सड़क अवसंरचना के विस्तार और भविष्य की राजमार्ग परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। उधर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर राजस्थान के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर को राज्य में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने केंद्रीय व्यय सचिव, राजस्व सचिव और रक्षा सचिव से मुलाकात कर केंद्र प्रायोजित योजनाओं, जीएसटी सुधारों और मेक इन इंडिया से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य पुलिस के विशेष यातायात अभियान के तहत पहले चार दिनों में 78,000 से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस यातायात डॉ बीएल मीणा ने बताया कि 2 से 5 जुलाई तक बिना हेलमेट वाहन चलाने, तेज रफ्तार, अवैध पार्किंग और राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेन अनुशासन का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये विशेष अभियान 16 जुलाई तक पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए आमेर में यातायात और पर्यटक सुविधाओं को बेहतर बनाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कल जयपुर में पर्यटन, पुरातत्व, नगर निगम, यातायात पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में आमेर क्षेत्र में यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, पर्यटकों के सुगम आवागमन और आवश्यक नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने पर चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित समय सीमा में पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करें ताकि आमेर आने वाले पर्यटकों को अच्छा अनुभव मिले। नीम का थाना में लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से बनी 100 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक राजकीय मातृ और शिशु अस्पताल का राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर ने लोकार्पण किया। ये अस्पताल प्रधानमंत्री केयर्स फंड से तैयार किया गया है। अस्पताल प्रभारी डॉ गोविंद छापोला ने बताया कि इसमें आधुनिक ऑपरेशन थियेटर, नवजात शिशु गहन देखभाल इकाई, बच्चों के उपचार के लिए अत्याधुनिक उपकरण और वातानुकूलित सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इससे स्थानीय लोगों को सहूलियत होगी।
1: ये जो महिला अस्पताल बना है नीम का थाना में, ये बहुत ही सुविधाजनक और अच्छा बना है। कम से कम 100 किलोमीटर दूर तक के जो आएंगे उनको बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। अब जयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
2: इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा स्पेस है, तो इस क्षेत्र के लिए ये संस्था बहुत ही बड़ा वरदान साबित होगी।
0: प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के कारण विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 2 सेंटीमीटर बारिश जोधपुर शहर में दर्ज की

0: गई। दौसा, पाली, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, चूरू और सवाईमाधोपुर में कई स्थानों पर हल्की तो कई जगह मध्यम बरसात हुई। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण में हुई बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। बाड़मेर जिले में कल दोपहर बाद अंधड़ के साथ शुरू हुआ बरसात का दौर देर शाम तक जारी रहा। इस दौरान नोखड़ा इलाके में मूसलाधार बारिश हुई। सेड़वा, धनाऊ और चौहटन सहित कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई।
1: जिले में कल तीसरे पहर तेज आंधी आने से आसमान में धूल का गुब्बार छा गया। देखते ही देखते काली घटाएं घिराई और बरसात का दौर शुरू हो गया। जिला मुख्यालय के अलावा सेड़वा, धनाऊ और चौहटन समेत कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। नोखड़ा इलाके के गांवों में जमकर बादल बरसे। मानसून की पहली बरसात से किसानों में खुशी की लहर है। इस बीच किसान खरीफ की फसलों की बुवाई में लग गए हैं। आज घने बादल छाए हुए हैं और मौसम खुशगवार बना हुआ है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: मौसम विभाग के अनुसार दो तीन दिनों तक उदयपुर और कोटा संभाग के साथ ही पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं अति भारी बरसात की संभावना है। वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा तथा आज और कल कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 10 जुलाई से भारी वर्षा की गतिविधियों में कमी आने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-2025 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। राज्य पुलिस के विशेष यातायात अभियान के तहत पहले चार दिनों में 78,000 से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। और प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के कारण विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी। उदयपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। FM 102, FM 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR और ऑल इंडिया रेडियो लाइव मोबाइल ऐप पर भी चंबल चैनल का प्रसारण आप सुन रहे हैं। और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम का यह है पहला गीत।

श्रोताओ, फिल्म संगीत चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाज रूप कुमार राठौर की, फिल्म का नाम रब ने बना दी जोड़ी। शब्द जयदीप साहनी के, सलीम सुलेमान का ये संगीत है।

ये आवाज थी रूप कुमार राठौर की। फिल्म का नाम रब ने बना दी जोड़ी। कार्यक्रम में अगला गीत। फिल्म का नाम ओम शांति ओम। सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाजें, जावेद अख्तर के शब्द और विशाल शेखर का संगीत।

ओम शांति ओम फिल्म के इस गीत में आवाजें थी सोनू निगम और श्रेया घोषाल की। श्रोताओं, फिल्म संगीत चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं प्रातःकालीन प्रसारण सभा में। कार्यक्रम में एक जानकारी आपको दे दें, घर आंगन ये कार्यक्रम बहनें सुनेंगी 9:30 पर। इसमें चर्चा होगी बरसात से पहले घर की देखभाल कैसे करें इस विषय पर, और वनों और पेड़ पौधों के संरक्षण में महिलाओं का योगदान इस विषय पर जानकारी श्रीमती श्रद्धा ठाकुर से बातचीत के तहत आप सुन सकेंगे। एक और जानकारी लाडू प्रोत्साहन योजना पर बहनें सुनेंगी, तो सुनिएगा अवश्य घर आंगन कार्यक्रम फिल्म संगीत के तुरंत बाद 9:30 से। और अब फिल्म संगीत का अंतिम गीत, ये धुन है खुदगर्ज फिल्म के गीत की, जिसमें आवाजें मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की होंगी, शब्द इंदिवर के, और ये संगीत राजेश रोशन का है।

श्रोताओं, खुदगर्ज फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब संपन्न करते हैं। आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। अब बहिनें अपना कार्यक्रम सुनेंगी, घर आंगन।

घर आंगण कार्यक्रम सुनवा वाली संधि माँ की बण्या ने ममता बणा की आडीसू घणो घणो राम राम। बण्या आशा करू छू कि था ई बदलता मौसम परिवार सहित मजा में ही होगी। बण्या जशा के अब लगभग बरसात की शुरुआत होबा ही वाली छे और कहीं कहीं तो शुरुआत हो भी गई। तो बण्या जैसा के कहावत भी छे ना के आपने बाढ़ आबा के पहली पाड़ बांध लेनी चाहिए। तो बण्या आपने भी बरसात शुरू होबा के पहली ही घरा भरा का कुछ काम पहले ही कर लेनी चाहिए जिसु कई बरखा की ऋतु में आपने कतई परेशान न होनी पड़ा। बण्या जैसा का आभार आपने छता की छोकासु सफाई कर देनी चाहिए। ई बात पर भी ध्यान देनी चाहिए का कहीं छत पर कबाड़ तो न पड़ो ना और यदि पड़े हो तो वहां तुरंत हटा देवा क्योंकि ई कबाड़ में भरिया पानी सु ही मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया जैसी खतरनाक जानलेवा बीमारियां का कीटाणु पनप छे और फिर आपने बीमार करे छे। और इके अलावा बने कूलर में भरिया पानी ने भी आपने निकाल देनी चाहिए और हर एक दो दिन में इनकी सफाई भी करता रहनी चाहिए। बण्या यदि आपने पानी संचयन के लिए भूमिगत टंकिया बना रखी छे तो वहां की भी साफ सफाई छोकासु कर लेवा और इमो उतरबा वाला छत सु जुड़ा पाइपा की भी छोकासु साफ सफाई कर लेवा ताकि आपन ई बरखा जल को संचयन छोकासु कर सका। बण्या इके अलावा भी आपने घर में भी कहीं खाड़ा खोच रहा हो रहा हो तो वहां तुरंत मिट्टी या रेत सीमेंट सु भर देवा। छत कोलू की होव तो तुरंत या कोलवा ने सरवा लेवा या खेवा का छोकासु जमवा लेवा। घर की नाले की चौकासू सफाई कर देवा और साथ ही वहां का मौका पर बारीक जाली या कोई भी आड़ लगा देवा ताकि का कोई भी कीड़ो काटो अपना घर में प्रवेश न कर पाओ। बण्या अपना ओढ़वा बिछावा का बिस्तरा ने छोकासू रख देवा और खाट पालक्या ने भी छोका करवा लेवा क्योंकि बण्या बरखा की ऋतु में जहां ताई हो आपन सभ्या ने जमीन सु थोड़ो ऊपर ही सोनी चाहिए। इके अलावा भी बण्या रसोई में बलिता की व्यवस्था आपने अबारी कर लेनी चाहिए और वहीं छोकासू जमा भी लेनी चाहिए। नाच पानी की व्यवस्था भी आपने करी लेनी चाहिए ताकि भरियो अनाज आपने खोलनी ही न पड़े वरना बण्या कई बारी बरखा की नमी सु आपनो भंडारण करियो संदो अनाज खराब हो जाचे उम कीड़ा लाग जाओ छे। घर में जो छतरियां या पानी सु बचाव का अन्य सामान रहे हो और टार्च बैटरियां यदि खराब हो रही हो तो वहां भी चौकी करवा लेवा वरना नई अबार ही ले आवा। लालटेन चिमनिया न भी तैयार रखा या मोमबत्तियां लार रखा क्योंकि बण्या बरखा की ऋतु में लाइटा को भी भरोसा न रहे। और एक और जरूरी काम जो अपन अबार ही कर सका छा और वो काम छे अपना घर का आसपास जहां भी खाली जगह छे और जहां पौधों पनप सके छे और वृक्ष बन सके छे वहां जरूर सु जरूर पौधा लगावा क्योंकि बण्या यो वर्षा जल अपन सभ्या के लिए अमृत छे इसलिए ई ऋत न व्यर्थ ही न बेबा देनो छे। इके लिए संचयन को प्रबंध अपन ने अवार सु ही करनो छे। तो बण्या यही कुछ छोटा मोटा काम करके अपन इस सुहावनी मन न मोहबा वाली ऋत न और भी खूब

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: अब सुना स्थल रिकॉर्डिंग आधारित बातचीत।
2: भगत भगत परमा, आप जैसी ही कुछ बढ़िया विशेष विशेष से जुड़ी जानकार आप सभी ने द्वारा रहे और इकले में जवा था आकाशवाणी का स्टूडियो सु 12 और 12 जाकर आप जैसी ही कुछ बढ़िया का विचार आप सभी के बीच रखा था। बड़े जैसा का आज को भगत चल रहे थे, आपने चारों में ग्लोबल वार्मिंग की बात सुन रहा था, पर्यावरण संतुलन की बात करा था, पर बने कभी आपन सभ्या ने इस बात पर विचार करो का आखिर में यो ऋतुओं को संतुलन बगड़ क्यों रहे थे। तो इसीलिए बने आज की स्थल रिकॉर्डिंग आधारित कार्यक्रम में आपन बातचीत को विषय रखो छे पर्यावरण संरक्षण से ही जुड़ो का वनों और पेड़ पौधों के संरक्षण में महिलाओं का योगदान। तो बने आज इस विषय ने लेकर ही आपन बातचीत करेंगे आप जैसे ही कुछ बने सो। तो लो चला की प्रकार आपनी बने वन और पेड़ पौधा ने बचा सके छे और की प्रकार पर्यावरण संरक्षण में अपनो योगदान दे सके छे। बने माँ कुछ आगे बढ़ा तो माने एक हरियो भरियो छोटा बड़ा पेड़ पौधा सु सजो धजो घर जिमे कई तरह की सुंदर सुंदर मन न होबा वाली कोई लटकती तो कोई रस्सी का सहारा ऊपर चढ़ती बेलड़िया और रंग बिरंगा फूल और पत्तिया सुसजा धजा छोटा बड़ा गमला का साथ साथ ही कई सारा प्राकृतिक रूप सु बनया। सुंदर घोंसला जो के चढ़ी चुगला के द्वारा ऐसा बनाया गया छ का आपन मनक भी पूरो दिमाग लगाकर भी यहाँ न बना सका। बने ही घर न देख कर अशो लागे छ मानो छोटो मोटो जंगल शहर के बीच में ही आ बसो छ, क्योंकि बने मुँह देख पा रही छू तो यहाँ अनगिनत छोटा बड़ा पेड़ पौधा और साथ ही चढ़ी चुगला की चहल पहल भी छे। और बने इस चहल पहल के बीच ही आपने एक बन या पेड़ पौधा के बीच कुछ काम करती नजर आ रही छे। तो बने क्यों न आपने ई बन का ही विचार जान लेवा वन और पेड़ पौधा का संरक्षण में महिलाओं का योगदान पर। राम राम।
3: राम राम।
2: क्या नाम छे आपको?
3: मेरा नाम श्रद्धा ठाकुर है।
2: अच्छा जी, श्रद्धा जी आपको पेड़ पौधा सु प्रेम तो मैं देख पा रहा था, पर आप माने यह बताओ कि ई काम का लाओ भी आप और भी कई कई काम करो छो कर?
3: बिल्कुल बिल्कुल ममता जी, मैं पेड़ पौधों के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ और समाज के लिए मैं काफी वर्षों से कार्यरत हूँ और विशेष तौर पर जो मेरा कार्य क्षेत्र है वो रक्तदान से संबंधित है।
2: बहुत बढ़िया।
3: और रक्तदान के क्षेत्र में लोगों को जागरूकता अवेयरनेस और रक्तदान के क्षेत्र में ही काम कर रही हूँ। कोटा के आसपास सारे ग्रामीण क्षेत्रों में मेरा कार्य क्षेत्र है, मैं वहीं जाती हूँ और लोगों को प्रति उनको जागरूक करती हूँ, रक्तदान के प्रति सबकी अलग जगाती हूँ।
2: बहुत बढ़िया।
3: इससे मैं काफी लोगों से जुड़ाव है और लोगों की मदद भी करती हूँ इसी के तहत।
2: बहुत बढ़िया। पर श्रद्धा जी एक तरफ तो रक्तदान और एक तरफ ये पेड़ पौधा सुप्रेम, तो यो कैसा संभव हो पाऊ?
3: ये इस तरीके से जब मैं कोटा में रहती हूँ रक्तदान करती हूँ और साथ में जब ग्रामीण परिवेश में जाती हूँ तो वहाँ हरियाली देखती
2: हूँ,
3: चारों तरफ हरा भरा नजर आता है। हम अक्सर यही कहते हैं कि हमें गांव जैसा शहर भी सुंदर बनाना, गांव में हरियाली होती है, अपनापन होता है, तो उसी के तहत मैं उसको लेकर अपने घर में आई।
2: अच्छा जी।
3: और इसी के तहत मैंने छोटे बड़े गमलों में बहुत सारे पौधे मैंने लगाए, पौधे बच्चे पेड़ होते गए। अब धीरे धीरे मेरा 10 साल मुझे इस गार्डन को डेवलप करते हो गए।
2: बहुत बढ़िया।
3: 10 साल से मैंने आज इनको बड़ा कराया, इन पौधों को अपने बच्चों की तरह सींचा है। ग्रामीण परिवेश के साथ साथ में उसके साथ जुड़ती गई तो ये हरियाली मैं अपने घर में भी ले आई साथ में।
2: बहुत बढ़िया। श्रद्धा जी जैसा कि आपने बताया कि आप समाज सेविका छो और आप एक सच्ची समाज सेविका होगी भी से, क्योंकि जैसा कि मैं देख पा रहा था कि आपने एक एक पेड़ पौधा के लिए कितनी छोकी तरह से उनकी पूरी व्यवस्था को ध्यान रखाता हुआ राख रखे थे। तो श्रद्धा जी आप माने यहाँ बताओ कि हाल ही में यहाँ गणती में कुल कितना पेड़ पौधा मौजूद होगा लगभग?

0: अगर मैं आपको बताऊं तो छोटे बड़े सब कुछ मिला के 7,000 मेरे पास प्लांट्स होंगे, पौधे हैं।
1: 7,000?
0: 7,000 छोटे बड़े मिलाकर 7,000 है जिनको मैं देखती हूँ। और इतनी बेले हैं, मैं काटती नहीं हूँ पेड़ों को। सबसे बड़ी चीज मैं इनको काटती नहीं, कटाई छटाई नहीं करती हूँ। गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनकी जरूर सफाई करके जैसे मरहम पट्टी होती है उस तरीके से मैं कर देती हूँ। बाकी ये ना उनको स्वतः ही जैसे ये बेले जहाँ जाना चाहती है उनको उन्हीं के रुख में मोड़ती हूँ, अपने रुख में मैं नहीं मोड़ती हूँ।
1: बहुत बढ़िया,
0: बिल्कुल जंगल के उससे मैं बना रखा है मैंने, एक मिनी जंगल, आप छोटा जंगल मेरे घर।
1: हाँ बिल्कुल, मैं देख भी पा रही थी बात तो
0: बिल्कुल।
1: अच्छा श्रद्धा जी, या तो बात करी था ना बेलड़िया की, और भी जो आपने छोटा पेड़ पौधा छे यहाँ की देखभाल आप कशा करो छो, और ये काम मकाए आपने परेशानी भी आउचो कर?
0: देखो हर काम करते हैं वहाँ अच्छाई और बुराई दोनों होती है, परेशानी भी होती है तो फल भी मिलता है उस परेशानी
1: का। हाँ बिल्कुल,
0: कई बार पौधे जो होते हैं मुरझा जाते हैं ज्यादा पानी से, धूप से, गर्मी से, तो इनको देख रेख और रख रखरखाव, इनके लिए दवाई, इनके लिए पानी, इनके पोषक तत्व इनको देने पड़ते हैं मुझे,
1: बिल्कुल।
0: तो उन पोषक तत्वों के साथ ही इनको मैं बड़ा कर सकती हूँ। पोषक तत्व अगर आप चाहें, महिला जितनी भी मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, तो घर में बहुत सारे पोषक तत्व इनके पास मौजूद रहते हैं। तो सबसे पहली चीज तो अगर आपका कोई भी पौधा या तुलसी मर रही है तो उस पर आप हल्दी का छिड़काव कर दे, अपनी रसोई में से ही शुरू होते पोषक तत्व,
1: बिल्कुल
0: है ना। हल्दी आप डालेंगे तो वो बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी, आप उसकी जड़ों में हल्दी मिला दें।
1: वाह जी, बहुत बढ़िया बात बताई है तो आपने।
0: कुछ पौधों को तो नमक की जरूरत होती है,
1: अच्छा जी,
0: नमक भी डाल सकते हैं हल्का सा। और बहुत सारे नींबू का पौधा रहा जो अपने खट्टे फल देते हैं, विटामिन सी के जो है पौधे, उनको छाछ और दही की जरूरत होती है, आप छाछ डालें ये पौधा आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देगा, छाछ डालेंगे तो।
1: बिल्कुल, और देखो गांव में तो घर घर में छाछ हो जाए तो डाल ही सके छाछ नहीं बने।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए ऐसी चीज कि जो गार्डन अपन जो अपनी हरियाली पन कर रहे हैं काम, तो महिलाएं अगर इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, आना चाहती हैं, मैं इन सभी बहनों से कहूंगी कि सब अपने घर में छोटा सा मिनी गार्डन लगाएं, और कोई भी बाहर से लाके आप कोई भी ऐसी दवाई न डालें, आपके पास किचन में हर चीज मौजूद है।
1: बहुत बढ़िया,
0: बस एक थोड़ी सी जानकारी की जरूरत है।
1: सही बात है श्रद्धा जी। अभी एक बात बताओ, का अपना बड़ा बूढ़ा क्यों चाह का पेड़ पौधा आपन से बात करे छे, अपना मनोभाव न भी समझे, तो आप माँ ये बताओ कहीं यह बात सही छे?
0: ये 100 नहीं 200 प्रतिशत बिल्कुल सही है आपका कथन। मैं कहूंगी कि पेड़ पौधे आपके बच्चे जैसे हैं, जैसे आपका बच्चा होता है, आप उसको छोड़कर जाते हैं और बाहर ही कोई आकर उसका हाथ मरोड़ जाए पता, तो वो अपनी माँ को अगर बोल नहीं पा रहा है तो बताएगा कि मेरी आज ये तकलीफ हुई। इसी तरीके से पौधे आपसे ये लिविंग थिंग है, मतलब सजीव प्राणी, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो इसमें जान है। आप ये सोचे पौधा छोटे से बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है, तो इसमें जान है, तो वो आपको सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, आपकी भावनाओं को समझता है वो। तो उसको आप आराम से आप उसकी भावना समझ सकते हैं। पत्ती बताएगी कि वो मुरझा रही है तो वो क्या चाहती है आपसे, कई बार वो स्नेह से बात करना भी चाहते हैं, इनके पास जाके शाम को आप बातें करें।
1: बिल्कुल,
0: आप अपनी मन की भी भड़ास निकाल पाएंगे, उनसे बात भी कर पाएंगे, और पौधा पनपेगा और आपको रिप्लाई भी देगा, खुशी
1: बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ऐसा भी आपने देख पा रही चुका, आप कितना सकारात्मक छो। अच्छा श्रद्धा जी, आपके पास इतना सारा पेड़ पौधा छे, तो आप कैसा ध्यान रखानो छो कि खी पौधा न कतनो पानी चाहिए और खी न पोषक तत्व चाहिए?
0: अब मुझे इतने वर्ष हो गए हैं इनके साथ, तो मुझे बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो गर्मी में बहुत बढ़ते हैं, उनमें पानी कम डालो, कम से कम पानी मांगते हैं वो हफ्ते में एक बार। गर्मी सर्दियों में तो मतलब महीने में एक या दो बार पानी मांगते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको दिन में 3 बार पानी चाहिए होता है, जैसे आप मोगरा लेंगे, चमेली लेंगे, गुलाब लेंगे, इनको गर्मी में 3 बार पानी चाहिए। आप सिर्फ जो मिट्टी की जो नमी है ना उससे आप पता कर सकते हैं कि पौधे को क्या चाहिए, पौधा क्या मांग रहा है। मिट्टी की नमी से आप पता कर सकते हैं कि बिल्कुल वो बताएगा कि सूख रही है मिट्टी, तो हर पौधे की एक टेंडेंसी होती है तो पता है कि मुझे कितना पानी पीना है, जैसे अपनी स्किन भी शुष्क हो जाती है, बिल्कुल सूख जाती है बिना पानी। यही चीज पौधों के साथ भी अप्लाई होती है।
1: बिल्कुल, जब
0: बता देंगे,
1: हाँ जब आप पेड़ पौधा के साथ वक्त बिताऊंगा तो आप भी वहाँ की सारी चीजें की पहचान हो जाओगी, तो वहाँ कहीं छाएगी।
0: मैं कहना चाहूंगी एक माँ और बच्चे का रिश्ता है पौधे का।
1: बिल्कुल जी,
0: स्त्री अगर करती है तो एकदम उसका माँ और बच्चे का रिश्ता पनपने लग जाता है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप अपनी भावनाएं अपनी माँ को व्यक्त करता है पौधा।
1: बिल्कुल श्रद्धा जी। अच्छा श्रद्धा जी, या तो बात हुई आपका घर नहीं हरो भरो राग बाकी, पर आप माने या बताओ कि किस प्रकार

0: આપણા ગામ શહેરના રાષ્ટ્રના હરોભરો રાખવા કે લી આપણે આડીશું પ્રયાસ કરું છો.
1: મેં મેરી સભી મહિલા બહેનો થી કહુંગી કે હમ પૂરે રાષ્ટ્ર કો હરા ભરા હમ સ્વયં કર સકતે હૈ. હમ એક જનની હૈ, માં જનની હોતી હૈ. જિસ તરીકે સે હમ અપના પરિવાર બના રહી હૈ, અપને પરિવાર કે સંરક્ષણ હમ કરતે હૈ, સ્વયં મહિલાએ કર રહી હૈ. આપ પહેલે સબસે પહેલે અપને ઘર કો હરા ભરા બનાએ,
0: બિલકુલ
1: ઘર કે આસપાસ કે ક્ષેત્ર કો હરા બનાએ. તો થોડા સા એક કવર કર લેંગી ને, એક કિલોમીટર કા દાયરા સ્વયં,
0: બિલકુલ
1: દૂસરી મહિલા ભી કરેગી, તીસરી ભી કરેગી, હમે દૂર નહીં. ઇસી તરીકે સે પૂરા એક ક્ષેત્ર હરા હો જાય.
0: હા કાઈ ને તો આપણે આપણી ગલી ને તો હરો કર લે, ઘર કે લારા લારા.
1: સાથ સાથ અપની ગલી કો, અપને મોહલ્લે કો, અપને એરિયા કો હરા કરના શરૂ કરેંગે. યુ કહેતે ના એક ચના ભાડ નહીં ફોટા, સારે મિલકે કર સકતે. તો સારે મિલકે હમ ક્યા નહીં કર સકતે.
0: બિલકુલ બિલકુલ. અચ્છા શ્રદ્ધા જી, યા તો દેખો આપને વાત કરી કે આપણ આપણા આસપાસ કસે હરોભરો રાખ સકા છે. એના અલાવા આપણે પેડ પૌધા ને દૂસરા જણા ભી યા કી સેવા કરે યા ને રાખે, તો એકલે આપણ વાઈ કસા પ્રેરિત કર સકા છે.
1: मुझे जानने वाले सभी लोग जानते हैं कि मैं अपना संदेश ना पौधे के माध्यम से ही पहुंचाती हूं.
0: अच्छा.
1: संदेश मेरा ये बधाई का, जैसे किसी का जन्मदिन हुआ, विवाह हुआ, या आपकी शादी की सालगिरह हुई, किसी तरह का घर में अगर किसी को उत्सव होता है, मकान का नांगल होता है, मैं हमेशा एक पौधा ही गिफ्ट करती हूँ.
0: बहुत बढ़िया.
1: और उनको बोल के आती हूँ कि इस पौधे को आप बड़ा करें, तब मुझे अच्छा लगेगा कि आप इस पौधे को बड़ा कर रहे हैं. चाहती तो मैं एक बुके ले जाती हूँ, वो बुके लेते हैं फेंक देते हैं, दूसरे दिन वो डस्टबिन में ही जाता है, कोई यूज नहीं होता है. और उससे कम, आधे से आधे कम पैसे में एक पौधा आ जाता है. आप चाहें तो एक पौधा गिफ्ट करें, उनके घर की शोभा को बढ़ाएं.
0: सही, बिल्कुल.
1: जो बढ़ेगी तो आज वो याद रखेंगे जीवन भर कि ये पौधा श्रद्धा जी ने दिया था, ये उनका बड़ा हुआ पौधा.
0: हाँ, और वो सही बरसाता है वहाँ के लारा भी देंगे.
1: बिल्कुल, मेरी मेरी याद और नाम उनके घर में रहेंगे. इतना सा संदेश देती हूँ जिससे सब लोगों को ये कि अपन ज्यादा ना बोल के थोड़ा सा कम उनको दिखा देते हैं कि अपन ये, आप ये करें, हमारे विचार हैं कि आप पौधों को संरक्षित करें. मैं आप सभी बहनों से एक विनम्र निवेदन जरूर करूंगी कि आप कहीं भी अपने किसी भी आप एक ग्रुप में आप जाती हैं और पौधे लगाती हैं, तो आपसे एक करबद्ध एक निवेदन है कि उस पौधे की देखरेख की जिम्मेदारी आप स्वयं लें, न कि छोड़े कि आज हम पौधा लगाया है कहीं मंदिर पे, किसी गार्डन में या किसी क्षेत्र में जाकर ये लगा के और फोटो खिंचाने का काम न करें.
0: बिल्कुल जी.
1: तो उसको ये करें कि हमने ये दो साल पहले लगाया था छोटा, आज ये हमसे बड़ा हो गया है.
0: हाँ, कम से कम आपने बराबर हो जाओ तब तक तो उनकी देख रेख की आपने व्यवस्था खुद रखा.
1: हाँ, माँ को ध्यान देखना पड़ता है जब तक बालक बड़ा ना हो. तो एक ही आपसे सबसे निवेदन है कि पानी की व्यवस्था उसके थोड़ा सा सीधे है, उसको छोड़ ना आए, इसे लगा के छोड़ के और फोटो खिंचा के ये काम ना करें. सभी से विनम्र निवेदन करूंगी कि बहने आप सभी जाए और इसको लगाकर सींचने का कार्य भी करें.
0: बिल्कुल श्रद्धा जी. अच्छा श्रद्धा जी, मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आपका घर में बारह की अपेक्षा ठंडाई छे, तो इको काई कारण छे?
1: मेरे यहाँ पे आप गर्मी के टाइम लेंगे तो 6 से 7 डिग्री के टेम्परेचर मेरे घर का कम होता है.
0: अच्छा जी,
1: को आप आकर भी देख सकते हैं. मेरे नीचे जो पोर्शन है उसमें कहीं भी एसी का यूज नहीं होता है, ना कूलर का यूज होता है. बहुत गर्मी में लू चलती है तब भी यूज नहीं होता, बहुत ठंडा रहता है.
0: बिल्कुल श्रद्धा जी, मैं तो महसूस कर पा रही हूँ बार भी.
1: और अभी इनके लिए जरूर ग्रीन नेट लगाती हूँ गर्मी में पौधों को बचाने के लिए. बहुत सारी बेलें ऐसी हैं, बेलें नाजुक होती हैं, उनको बचाने के लिए मुझे ग्रीन नेट उनके रखरखाव के लिए कार्य करना पड़ता है. तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, क्या उनको बचाव, रखरखाव, सब चीज हमें ध्यान में रखकर पौधों का इस तरीके से संरक्षण बहुत जरूरी है.
0: तो बने आप सभी भी श्रद्धा जी से सीख ले सको छो और एक छोटो सो प्रयास अपना घर से ही शुरू कर सको छो और अपना गाँव शहर न हरो भरो कर पृथ्वी ने ग्लोबल वार्मिंग का संकट से बचा सको छो. श्रद्धा जी, अखबार एक शब्द यो ग्लोबल वार्मिंग घणो चाल रो छे, तो संकट से आप दूर होवा के लिए आप कहीं कर सका जा?
1: ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा चल रहा है इसको बचाने के लिए महिलाओं को आगे आना ही पड़ेगा. आप गृहिणी हैं, घर में आप सबको संरक्षण दे रही हैं, आपको बाहर की हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए हमें आना पड़ेगा. तो मैं लूंगी तो महिला राजस्थान का ही मैं नाम लूंगी. हमारे राजस्थान में पौराणिक काल से ही प्रथा चली आ रही है. आपको इसी के तहत बताना चाहूंगी, राजस्थान के जोधपुर शहर में अमृता देवी विष्णु ही थी एक, जिन्होंने अपनी 3 बेटियों और सैकड़ों ग्रामीणों के साथ मिलकर हरे भरे पेड़ों को कटे से बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। तो मैं यही कहूंगी कि वो जब इतना कर

0: रख सकती हैं, पेड़ों के लिए अपना प्राण नौछावर कर सकती हैं, तो हम इनको बचाने के लिए हम घर में से बाहर क्यों नहीं आ सकते।
1: बिल्कुल,
0: तो हमारी राजस्थान में शुरू से परंपरा रही है, हर महिला खड़ी हो जाती है एक बिल्कुल सीना तान के। तो मैं सबसे यही बहनों से चाहूंगी कि आप ग्लोबल वार्मिंग की तहत आप इसको हमारे संरक्षित करें राजस्थान को, और हरा भरा बनाने का प्रयास करें हमारे खासकर हाड़ौती क्षेत्र।
1: बिल्कुल श्रद्धा जी, शायद इसीलिए आपने जो पुरानी परंपरा थी जी, मैं आपने बड़सी इचबा की, पीपल सीचबा की, तुलसी पूजन की, ये शायद इसीलिए आपने बड़ा बूढ़ा ने रखी गई थी शायद।
0: वो इसीलिए कि इनको खींचेंगी तो हरियाली होगी, बड़ा पेड़ होगा, और उसको पूजेंगी तो काटना नहीं पड़ेगा। जिसको हम पूजा करेंगे, अगर किसी पेड़ को काटना पाप माना जाता है, अगर आप उसको पूजा कर रहे हैं तो।
1: हाँ तो श्रद्धा जी, एक और बात का, अपनी माँ बहने तो पेड़ पौधा भी लगाओ थे और वहाँ की हवा पानी की व्यवस्था भी छोपासु कर ले थे, पर आप यह बताओ का अपनी माँ बहने अपना बाल बच्चा में ई पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा कैसा दे सके।
0: बिल्कुल सही, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है अमंता जी। इसके अंतर्गत मैं ये कहना चाहूंगी कि माँ ही जननी होती है बच्चे की। तो माँ जैसे प्राथमिक शिक्षा के तौर पर अपने घर से ही बच्चे को शुरू से प्राथमिक शिक्षा देगी। एक पौधा बनाना है, बीज डालना है, सबसे पहले खाद डालनी है, पानी डालना है, मिट्टी डालनी है, तो उसको एक पौधे में डेवलप करना है आपको शुरू से। जब हम प्राथमिक शिक्षा में ये अंतर्गत ये लेंगे, उस बच्चे के घर से ही शुरू करेंगे, तो बड़ा होकर अपने आप उसमें भावनाएं पनपने लग जाएंगी, अपने ये संरक्षण के प्रति, हरियाली के प्रति, हमें वृक्षारोपण के प्रति। तो धीरे धीरे वो आगे जाके वो बड़ा रूप लेगी ना, जैसे हम प्राथमिक शिक्षा में ABCD सिखाते हैं तो पढ़ना लिखना सीखता है, इसी तरह से छोटा सा रूप लेके हम उसको दें, तो ये बहनें मेरी सभी इनको बच्चों को प्रेरित कर सकती हैं, और आगे हमारे पर्यावरण संरक्षण में ये बच्चे हमारा बहुत आगे योगदान दे सकते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया श्रद्धा जी। अब श्रद्धा जी, आप अंत में कार्यक्रम सुनवा वाली आपने गांव शहर की संधि माँ बहना ने अपने आईडी सु का संदेश देगा।
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, मेरी सभी माताएं और बहनें जो भी मुझे सुन रही हैं, एक इस संदेश को सुन के अपने आस पास में एक पेड़ जरूर लगाएं और उसको सींचें, और फिर ये याद रखें कि इस श्रद्धा ने कुछ कहा था कि इस पेड़ को अपने बराबर करना है और सींच कर वो खुशी, बस खुशी आपको जो मिलेगी वो मैं आपको अंतर्मन से बता नहीं सकती हूँ कि आपको कितनी खुशी होगी जब वो पेड़ आपसे लंबा हो जाएगा। आपको स्वयं ये लगेगा कि आज मेरा बेटा मुझसे बड़ा हो गया। हाँ, आप गांव में चाहें तो अपने आसपास के क्षेत्र में, अपने घर के बाहर आंगन में लगा सकते हैं, तो गांव में काफी जगह होती है। और अपने शहरी क्षेत्र की बहनों से मैं कहना चाहूंगी, आप अपने चाहें तो पौधों को एक गमलों में लगा सकती हैं, अन्यथा आप मंदिर प्रांगण होते हैं, गार्डन होते हैं, वहां जाकर आप पौधारोपण करके उनको संचित कर सकती हैं, और अपने बिल्कुल नजदीक लगाएं ताकि उनकी देखरेख आप कर सकें। चाहें तो आप अपनी छत पर भी अपने पूरा प्लांटेशन कर सकती हैं पौधों को लगा करके, और हरी भरी बना सकती हैं अपने घर को, अच्छा लगेगा देखने में भी।
1: बहुत बढ़िया श्रद्धा जी। श्रद्धा जी, आपने माँ का आकाशवाणी के लिए आपका कीमती भगत में सुभगत खाड़ियों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अपनी सारी बातें करी, इसके लिए आपको घनो घनो धन्यवाद। राम राम।
0: आप सभी बहनों को मेरा भी राम राम।
1: अब बनाओ बाता की तो नरी होगी, अब चला वापस तू आकाशवाणी का स्टूडियो में, फिर मिलेंगे एक नया विषय के साथ और आप जैसी ही बढ़िया के साथ। तो आज तो स्थल रिकॉर्डिंग आधारित कार्यक्रम में तू देव इजाजत था कि ममता बढ़ाना। राम राम।
2: बने अवार आपने सुनी स्थल रिकॉर्डिंग आधारित बातचीत, और बने बातचीत आगे भी करेंगे, पर फेली क्यों ने एक मीठो सो लोकगीत सुन लेवा।

पर वण्यो अब बात करा लाडो प्रोत्साहन योजना की। वण्यो लाडो प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार की आडिसु अपने बेटिया का सशक्तिकरण और बेहतर भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण पहल छ। बनाओ एक तहत बालिका का जन्म से लेकर 21 बरस की उम्र तक आपने बालिका के लिए कुल 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता 7 किस्ता में सीधा बैंक खाता में दी जाओ छ। बनाओ ई योजना न चलावा को मुख्य उद्देश्य आपने बेटिया की शिक्षा न बढ़ावा देबा के साथ ही कन्या भ्रूण हत्या न रोकबो और बाल विवाह जैसी कुप्रथा को अंत करबो भी छ। बनाओ यह योजना राज्य में बालिका का जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक वातावरण तैयार करबा के साथ ही बालिका को समग्र विकास भी करे छे। और बण्यो अब घड़ी बता रही छे आपसू इजाजत लेबा की, तो फिर मलंगा नई नई बाता

ग्रामीण बहिनें अभी अपना कार्यक्रम सुन रही थीं घर आंगन। चंबल चैनल का ये प्रसारण है FM 102, FM 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी। 10 बजे हैं, अब श्रोता सुनेंगे विविध भारती मुंबई का प्रसारण।

0: सेहतनामा कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशा लता देवलीकर को। इनसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह और ये है कार्यक्रम सेहतनामा। दोस्तों स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और जब बात महिलाओं के स्वास्थ्य की हो तो जागरूकता और सही जानकारी बेहद जरूरी हो जाती है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर महिला के जीवन से जुड़ा है। महिलाओं का स्वास्थ्य, हार्मोनल बदलाव, पीसीओडी, प्रजनन स्वास्थ्य और आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव, तो इन महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर जो नासिक से आई हैं। डॉक्टर आशा लता देवलीकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार। थैंक यू।
1: कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत अच्छा।
1: स्टूडियो में आकर
2: बहुत ही अच्छा लगा
1: जी। आज एक बड़ी समस्या हो गई है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है, जिस पर सजगता बहुत जरूरी है, वो है पीसीओडी। ये पीसीओडी क्या है और क्या ये हार्मोनल बदलाव के कारण होता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: यस, अभी पीसीओडी यानी बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। और पीसीओडी क्या है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसका फुल फॉर्म है पॉली यानी ज्यादा और सिस्ट यानी सिस्ट। पीसीओडी के दो है, पीसीओडी और पीसीओएस। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जो पीसीओडी है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है और पीसीओडी में क्लियरली होता है सिस्टिक ओवरीज। और जो पीसीओएस है जो उसमें मल्टीपल डिसऑर्डर होता है, सिंड्रोम्स होते हैं, ज्यादा लक्षण होते हैं, इसमें फर्टिलिटी पर इफेक्ट करता है। ये आजकल यही है पीसीओएस।
1: इसके लक्षण क्या है, मतलब क्या है इसमें खतरा क्या है?
2: पीसीओडी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और ये जो है ये फर्टिलिटी पे इफेक्ट करता है। फर्टिलिटी पे तो इफेक्ट करता ही यही है, लेकिन उसके साथ साथ में शुगर, बीपी हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है और आगे बहुत आगे चल के इंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। ये जितना सिंपल है उतना खतरनाक भी है ये बीमारी।
1: तो पीसीओडी असल में क्या है, ये क्या हार्मोनल
2: इम्बैलेंस? पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। क्या होता है, अभी जो ओपीडी में बच्ची आती है हमारे पास, 10 बच्चियों में से 6 बच्चियों में ये साइन दिखता है पीसीओडी, तो इसका बहुत ज्यादा ही प्रमाण हो गया है। रिप्रोडक्टिव एज जो होता है बच्चियों का 14 से 35 तक ये इफेक्ट करता है और ज्यादातर 20 से 30 तक उम्र के बच्चों में ये ज्यादा दिखता है
1: जी।
2: ये जो डिसीज है लाइफस्टाइल चेंज डिसीज है, लाइफस्टाइल चेंजिंग, डाइट और स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर्स में बहुत ज्यादा

0: अफेक्ट करते हैं और ये तीन फैक्टर के वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है
1: जी।
0: और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाने के वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन जिसको बोलते हैं और एंड्रोजन बढ़ने लगता है और ये बढ़ने के वजह से ओवुलेशन जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इसके वजह से नॉर्मल ओवुलेशन नहीं आता है, पीरियड रेगुलर नहीं आता है, ओरी सिस्टिक हो जाती है और इरेगुलर सब हो जाता है
1: जी। तो इसकी जैसे कि आप लक्षण बता रहे हैं पीरियड्स हाँ। नहीं आते हैं रेगुलर, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हाँ। हो जाती है ना लड़कियों की, महिलाओं की, उनको स्ट्रेस और बढ़ेगा। अगर स्ट्रेस और बढ़ेगा तो ये समस्या और बढ़ेगी, तो इसका क्या इलाज है?
0: हाँ, तो इसके लक्षण ही बताती हूँ मैं। पहला इसमें फर्स्ट लक्षण दिखता है पीरियड का इरेगुलर हो जाना और पीरियड का फ्लो कम हो जाना, स्कैंटी पीरियड्स बोलते हैं, कभी कभी ज्यादा भी हो जाना
1: हाँ।
0: कभी दो महीने के अंदर पीरियड आते हैं, तीन तीन महीने आते हैं, ये सिक्स सिक्स मंथ भी नहीं आते हैं
1: हाँ।
0: और कभी कभी मेडिसिन लेके ही पीरियड्स आ जाते हैं
1: हाँ।
0: वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है, चिड़चिड़ापन रहता है, एक्ने आते हैं, पिंपल्स आते हैं
1: हाँ।
0: रफ फेस दिखता है
1: जी।
0: और मूड स्विंग्स होते हैं, आलस आता है, बाल झड़ते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेयर ग्रोथ, अनवांटेड हेयर, चीन पे हेयर आते हैं, अपर लिप्स पे हेयर आते हैं, बॉडी पे अनवांटेड हेयर आने लगते हैं और इनफर्टिलिटी में ये बहुत इफेक्ट करता है, आगे चल के शुगर, थायराइड वो सब होता है
1: जी। तो इसका इलाज किस तरह से संभव है?
0: हाँ, इसका इलाज संभव है, इसका इलाज है कि नेचुरल वे से संभव है, जैसे वेट लॉस। पीसीओडी के पेशेंट में देखो तो 80% पेशेंट में ओवर वेट रहते हैं, पेशेंट वेट ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसका इलाज है वेट लॉस और एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, यानी
1: मेडिटेशन
0: हाँ वो थोड़ा, तो एक्सरसाइज, योगा, सूर्य नमस्कार, पावर योगा, वॉकिंग, एरोबिक्स, कार्डियो, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं, ये सब एक्सरसाइज में कर सकते हैं, 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम एक्सरसाइज इतना किया तो भी 35% तक पीसीओडी रिवर्स हो जाता है और डाइट।
1: तो अब आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुन लेते हैं, आपकी पसंद का कौन सा गाना?
0: अच्छा, एक प्यार का नगमा,
1: प्यार का नगमा है मौजू की रवानी, सुनते हैं ये गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है इसमें।

0: इस गाने के बाद डॉक्टर आशा लता, आपने जिक्र किया था कि पीसीओडी यानी कि ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है, असंतुलन है, और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी होता है। तो इनफर्टिलिटी के लिए जब पता चले कि हाँ बच्चा नहीं हो रहा है किसी कपल को, तो क्या है जांच पद्धति और क्या है उसका ट्रीटमेंट, बताइए। हाँ, पहले जांच पद्धति बताइए। हाँ, किस तरह
1: तो
0: से
1: जब इनफर्टिलिटी के पेशेंट ओपीडी में आते हैं तो 1 ईयर कुछ प्रिकॉशन यूज करते हुए भी उनको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है, तो फर्स्ट थिंग हम करते हैं लेडीज में, फीमेल में, ओवुलेशन स्टडी। कि ओवुलेशन स्टडी एक सोनोग्राफी होती है
0: जी।
1: और उसमें पता चलता है कि उसका यूटेरस सही है, यूटेरस की मेजरमेंट क्या है, ओरी सही है, गर्भनलिका जो है वो सही है, एंडोमेट्रियम थिकनेस जिसको हम बोलते हैं अंदर का अस्तर वो सही है, ये सब पता चलता है। और फिर उसके कोई हार्मोनल टेस्ट रहती है, उसमें रहता है ब्लड टेस्ट रहते हैं, वो पीरियड के सेकेंड डे से करना पड़ता है और वो खाली पेट करते हैं। उसमें FSH रहता है, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन बोलते हैं, LH रहता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, लिपिड प्रोफाइल रहता है, और सबसे बड़ी चीज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। ग्लूकोज का पूरा टेस्ट करते हैं, फास्टिंग, पीपी, और उसमें कुछ आ गया 120 के आसपास तो HbA1c, ये टेस्ट रहता है। और फर्टिलिटी के लिए AMH लेवल, एंटी मिलेरियन हार्मोन की लेवल रहती है, वो करना पड़ती है। इतना ब्लड टेस्ट रहता है और UHG सोनोग्राफी, ये दो टेस्ट बहुत जरूरी है। और मेल पार्टनर में हम सिमेन काउंट, सिमेन एनालिसिस करते हैं।
0: और अभी तो तकनीक काफी एडवांस हो गई है, तो इनफर्टिलिटी के जांच के लिए और भी कुछ जांच की पद्धति आ गई है, तो तुरंत पता चल जाता है कि हाँ इन्हें बच्चा न होने का क्या कारण है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। जैसे लेप्रोस्कोपी है तो क्या?
1: हाँ, वो थोड़ा जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लेप्रोस्कोपी, IVF या IUI एडवाइज हम लोग नहीं कर सकते, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोज देते हैं, लेट्रोजॉल, और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर। और शिफ्ट नहीं हो रहा है तो टेस्ट रहते हैं आगे चल के उनका ट्यूबल ब्लॉक है कि नहीं, वो एक अच्छे से टेस्ट रहता है
0: जी।
1: तो वो सब ठीक है, अभी नहीं हो रहा है नॉर्मल, कुछ ज्यादा दिन ब दिन ज्यादा बढ़ रहा है, तो आगे चल के उनको लेप्रोस्कोपी सजेस्ट करते हैं।
0: तो ये भी इनफर्टिलिटी भी एक ऐसा कारण है जो स्ट्रेस को बढ़ावा देता है।
1: हाँ।
0: आज हम बात करना चाह रहे हैं पीसीओडी और महिलाओं के अन्य तमाम समस्याओं पर, और आपने कहा डॉक्टर साहिबा कि जब पीसीओडी का इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारी समस्याएं होती, लक्षण है।
1: हाँ।
0: जैसे कि पीरियड्स का इररेगुलर हो जाना, तो पीरियड्स का इररेगुलर होता है कई बार, कई महिलाओं को, कई लड़कियों को हैवी ब्लीडिंग होती है, भयानक पेन होता है, तो दर्द से निजात पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? और ये भी सुना है कि फिर फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं क्या हैवी ब्लीडिंग की वजह से, इसके बारे में जानकारी दीजिए कि क्या है फाइब्रॉइड्स और
1: यूटेराइन फाइब्रॉइड और CSTA जो है। तो मेडिसिन लेकर देखते हैं पेशेंट को, अगर उसका साइज ज्यादा हुआ, फाइब्रॉइड बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो वो सर्जरी करना पड़ता है उसका।
0: कैसे पता चलता है कि फाइब्रॉइड्स है या नहीं?

0: यूएचजी में सोनोग्राफी में उसका परफेक्ट मेजरमेंट आता है
1: जी।
0: सोनोग्राफी तो, एक ही माध्यम है उसको
1: जी। तो क्या फाइब्रॉइड्स का ऑपरेशन करना जरूरी होता है या ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है?
0: शुरू में तो ट्रीटमेंट नहीं देना जरूरी है, और ट्रीटमेंट से नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है मेजरमेंट उसका, तो सर्जरी करना पड़ती है
1: जी। तो एक गाना और सुने आपके अच्छा, पसंद का कौन सा?
0: अजीब दास्ता
1: है जी, सुनते हैं। बेहतरीन गाना चुना है, लता मंगेशकर की आवाज है।

0: आपने कुछ लक्षण बताए हार्मोनल असंतुलन होता है, तो और क्या क्या लक्षण होते हैं जब हार्मोनल असंतुलन होता है, और इनको क्या नजरअंदाज करती हैं कई बार महिलाएं, तो क्या कुछ मुश्किलें आती हैं जब इन्हें नजरअंदाज करती हाँ। छोड़ देती हैं?
1: ये तो जब फिजिकली होता है तो हमको समझ में आता है कि नहीं उसको ये हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ये

0: हो रहा है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है इसमें, उसको नजरअंदाज कर दिया जा सकता है। तो मेंटल स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन है जिसे, और काउंसिलिंग पार्ट इसमें बहुत ज्यादा।
1: तो काउंसिलिंग किस तरह की होनी चाहिए?
0: काउंसिलिंग जब डॉक्टर के पास जाते हैं पेशेंट, तो डॉक्टर भी अच्छे, जब काउंसलर डॉक्टर हो गए तो पेशेंट का रेपो अच्छा हो जाता है उनसे, फ्रेंड भी जब वो अच्छे से समझाते हैं तो आधा काम इधर ही हो जाता है
1: जी,
0: ऐसा मुझे लगता है
1: जी।
0: और डीप ब्रीदिंग जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट एक थिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ी अभी जो चाहिए इस जमाने में, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, और उसका स्लीपिंग जो पार्ट है प्रॉपर स्लीप वो होना चाहिए, और समझाना चाहिए सब। और एक है पॉजिटिव विजुलाइजेशन, जो तुम मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, पॉजिटिव प्रोसेस, पॉजिटिव थिंक प्रोसेस और पॉजिटिव विजुलाइजेशन, ये बहुत बड़ी बात है
1: जी। डॉक्टर आशालता, पीसीओडी एक बड़ी समस्या है, हार्मोन्स का असंतुलन, तो इसमें डाइट्स का कितना बड़ा योगदान है? क्या डाइट्स के जरिए ठीक किया जा सकता है, खान पान के जरिए?
0: डाइट
1: किस तरह से ठीक किया जा सकता?
0: डाइट के जरिए 35 तक ठीक कर सकते हैं पीसीओडी, 35% तक ठीक कर सकते,
1: 35%।
0: हाँ, तो डाइट में, डाइट ही बहुत जरूरी है पीसीओडी यानी वुमन हेल्थ में, एक्सरसाइज, डाइट और स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर बहुत जरूरी है। और डाइट में हम देखें तो अभी फास्ट फूड खाते हैं बच्चिया, बस फास्ट फूड ही खाती है, बर्गर खाएगी, पिज्जा खाएगी, बाहर का सब खाएगी, तो ये सबसे बुरी बात है। कार्ब्स कम करना है इसमें, और फाइबर इंटेक करना है, जैसे सैलड हो, कच्चे स्प्राउट्स हो, कैलोरीज पर ध्यान देना है। हाँ, जो हमको डेली में लगता है 1800-2000 तक कैलोरीज, और बच्चियां लड़कियां खाती है 4000-5000 कैलोरी, तो कहाँ पर कम करना है, और कैलोरी अगर खा लिया तो बर्न कैसे करना है, तो उसको बर्न करना है एक्सरसाइज से। तो डाइट हम लोग जैसे बोलेंगे, तो टाइम पे सोना है, उठना है, पीसीओडी में पानी पीना है 3 से 4 लीटर, स्ट्रेस ना लेना है, और शुरू में उठते बराबर सुबह सुबह थोड़ा गर्म पानी पीना है, और अगर मेथी, थोड़ा जीरा, थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा ये भी डाले तो ये टी हो सकता है, हर्बल टी, उससे भी थोड़ा सा पीसीओडी कम होने में मदद कर सकते हैं। नाश्ते में फाया आलमंड, व्हाइट एग ये ले सकते हैं, स्प्राउट्स ये ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में मूंग दाल वगैरह ये चीले ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन उपमा, पोहा, शिरा ये कार्ब्स है, उससे वजन बढ़ता है और अफेक्ट करता है। और हरी सब्जियां बहुत जरूरी है, जैसे सभी मेथी, पालक ये सब, और हरी सब्जियां से भी 25% तक पीसीओडी या वुमन हेल्थ कम कर सकता है। और शुगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, शुगर, शुगर एकदम बंद, पीसीओडी के पेशेंट में हम शुगर बंद कर देते, शुगर, मैदा, व्हाइट जो चीजें, राइस जैसे
1: जी।
0: हाँ, और हाई प्रोटीन डाइट हम बोलते हैं पेशेंट को कि थोड़ा प्रोटीन लो, तो प्रोटीन किस में होता है, जैसे मिल्क है, टोफू है, पनीर है, गुड प्रोटीन होता है ड्राई फ्रूट्स में, वो भी हम बोलते हैं। और सप्लीमेंट्स भी लेना जरूरी है, हम उनको बोलते हैं जैसे ओमेगा फैटी हो गया, विटामिन डी 3 हो गया, विटामिन डी,
1: और विटामिन डी धूप से
0: सनलाइट,
1: और आजकल धूप की बहुत कमी है,
0: बहुत कमी है,
1: लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, घर में भी एसी, ऑफिस में भी एसी तो मिलता नहीं, तो धूप सेकना बहुत जरूरी है। धूप का ही एक गाना है, एक टुकड़ा धूप का, फिल्म थप्पड़ से, आप कहें तो वो गाना सुनवा दें, आप कहें तो कोई और गाना,
0: नहीं नहीं जरूर, वो बहुत अच्छा गाना है,
1: तो ठीक है ये गाना सुनते हैं जिसमें धूप है।

0: डाइट का कितना योगदान है?
1: डाइट का बहुत सारा योगदान है।
0: तो और क्या क्या डाइट्स ले सकते हैं?
1: अभी डाइट में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले सकते हैं, जैसे कोक हो गया और जो कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, हाँ, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स रहता है उसमें, वो बिल्कुल नहीं, चॉकलेट्स भी नहीं। और इससे बहुत ज्यादा शुगर लेवल बढ़ता है और शुगर लेवल इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। बाहर की चीजें जैसे रिसाइकलिंग ऑयल में हम जिसे बोलते हैं समोसा, जो
0: नहीं खाना चाहिए,
1: समोसे उसे ट्रांसफैट, ये ट्रांसफैटी एसिड बढ़ता है और वो भी ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। और पैकेज फूड जो होता है, पैकेट बंद पैकेट का फूड, वो भी नहीं चाहिए। प्रोसेसिंग फूड, नमकीन, भुजिया, जो सॉल्टी फूड्स है, वो भी नहीं।
0: तो और आपने कहा कि शक्कर बंद कर देना चाहिए एकदम, तो कई बार एकदम से शक्कर बंद हो जाए तो लोगों को चक्कर आना, इस तरह की समस्या, वीकनेस, कमजोरी महसूस होती है, तो उसके लिए फिर
1: वो फ्रूट्स से नेचुरल शुगर मिल जाती है
0: जी।

0: तो मतलब फ्रूट्स इंटेक कीजिए
1: जब अगर शक्कर छोड़े तो फल जरूर खाएं।
0: हाँ, फल जरूर खाएं। और ऐसा नहीं है कि शक्कर छोड़े गुड़ खाओ, अभी वैसा ही करती है महिलाएं कि हमको शक्कर छोड़ने बोला है और बोला है कि गुड़ खाओ, बिल्कुल गलत है। शक्कर की सब्स्टिट्यूट गुड़ नहीं है, शक्कर नहीं तो कोई नहीं, स्वीटनर कोई नहीं है,
1: मीठा वो भी
0: मीठा। हाँ, हमारे रोज के खाने में भी हमको शुगर जाती है। और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, खजूर वगैरह है, नेचुरल शुगर मिल जाती है,
1: वो खा सकते हैं।
0: खा सकते हैं।
1: और पीसीओडी जो हार्मोनल असंतुलन होता है तो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है।
0: हाँ, क्रॉनिक।
1: तो उसके लक्षण क्या है और कैसे इलाज हो सकता है?
0: हाँ, क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चिड़चिड़ पीसीओडी के पेशेंट, चिड़चिड़ बहुत ज्यादा होती है पीसीओडी के पेशेंट की। अभी जब भी पेशेंट हमारे पास आती है तो बोलती है कि चिड़चिड़ी बहुत होती है, कुछ भी हो, थोड़ा सा भी कुछ हो तो बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है। तो ये क्रॉनिक ये रहता है स्ट्रेस, और इससे कॉर्टिसोल बढ़ा देता है ये।

0: और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, खजूर वगैरह है, नेचुरल शुगर मिल जाती है,
1: वो खा सकते हैं।
0: खा सकते हैं।
1: और पीसीओडी जो हार्मोनल असंतुलन होता है, तो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है।
0: हाँ, क्रॉनिक।
1: तो उसके लक्षण क्या है और कैसे इलाज हो सकता है?
0: हाँ, क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चिड़चिड़ पीसीओडी के पेशेंट, चिड़चिड़ बहुत ज्यादा होती है पीसीओडी के पेशेंट की। अभी जब भी पेशेंट हमारे पास आती है तो बोलती है कि चिड़चिड़ी बहुत ही होती है, कुछ भी हो, थोड़ा सा भी कुछ हो तो बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है। तो ये क्रॉनिक ये रहता है स्ट्रेस, और इससे कॉर्टिसोल बढ़ा देता है ये, और वजन बढ़ता है, और ओलेशन ब्लॉक हो जाता है, सिस्टिक ओवरी हो जाती है, इनफर्टिलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है।
1: और क्या क्या कर सकते हैं इस स्ट्रेस से निजात पाने के लिए?
0: स्ट्रेस से कुछ तुम हॉबी हो या करियर पे ध्यान दो, या थोड़ा मेडिटेशन करो, या थोड़े अच्छे संगीत सुनो, और फिर थोड़ा सा मौन व्रत धारण करो।
1: हाँ। चलिए हम मौन व्रत धारण करते हैं, एक गाना सुनते हैं। बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
0: झिलमिल सितारों के
1: आंगन होगा, सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, आप पीसीओडी की बात करें और महिलाओं की और भी बीमारियां होती हैं जो महिलाएं जिनसे बचती भी हैं, जिन्हें छुपाती भी हैं, संकोच करती हैं। जैसे कि एक समस्या और है कि एक खास समय पर टीनेज पर 12 से 13 साल की उम्र में पीरियड्स शुरू होते हैं मासिक धर्म, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को ये बताया नहीं जाता, अवेयर नहीं किया जाता है, माँ बाप उन्हें इस बात की शिक्षा नहीं देते हैं। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से उनको जागरूक बनाया जाए, उनको जानकारी कैसे दी जाए इसके बारे में कुछ?
1: अभी जो है टीनेज में आने का, जो मेनार्क बोलते हैं हम लोग पीरियड स्टार्ट होने का, वो एज बहुत अर्लियर हो गया है,
0: जल्दी आ जाता
1: है। हाँ, जल्दी आ गया है। हम लोगों में जब 14 to 16 था, 12 से आता था, 12 ईयर से, अभी वो 8.5-9 साल की लड़कियों में भी दिख जाता है कि इसको मेनार्क स्टार्ट हो गया, इसको पीरियड स्टार्ट हो गया। और ये बहुत ज्यादा डरने की चीज है, डरने की चीज।
0: तो क्या वजह है इसकी?
1: इसकी वजह है जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है, 2-3 साल की, खाने लगती है, तो बस उसको फास्ट फूड देते हैं। हाँ, कोक ये वो सब। मोटी होती है बच्ची, ध्यान नहीं देते, खाती है। और जब जितना अर्लियर मेनार्क स्टार्ट हो गया, जितना अर्लियर तुमको पीरियड स्टार्ट हो गए, उतना पीसीओडी का खतरा बढ़ता है। और अभी पीरियड्स कैसे स्टार्ट होते हैं, क्या होते हैं, यूटेरस क्या चीज है, उसका फंक्शन कैसा है, ये सब स्कूल में इसके सब शोज होते हैं, बातें करती है डॉक्टर, और अवेयरनेस बहुत ज्यादा है।
0: और आपने ये गर्भाशय में सिस्ट बन जाता है,
1: गर्भाशय में सिस्ट बन जाता है,
0: क्या समस्या है और इसका इलाज कैसे होता?
1: गर्भाशय के साइड में दो गर्भनलिकाएं रहती है, और गर्भनलिके के नीचे ओरिस रहती है। और जनरली देखा जाए तो 30 डेज की साइकिल रहती है, 30, 28, 30। तो फर्स्ट 10 डेज, बीच के 10 डेज और लास्ट 10 डेज, इसे 30 डेज। तो फर्स्ट 10 डेज में ओवुलेशन नहीं होता है, लास्ट 10 डेज में ओवुलेशन हो जाता है, और बीच के 10 डेज जो होते हैं उसमें ओवुलेशन होता है, यानी ओरी से एक फॉलिकल निकलता है, अंडा निकलता है, वो रिलीज होता है, बाहर आता है, और जब स्पर्म उससे मिलता है तो प्रेगनेंसी कंसीव होती है, और नहीं मिलता है तो पीरियड्स आ जाता है। ये नेचुरल नॉर्मल लेडी में होता है, बीच के 10 डेज ओवुलेशन पीरियड। और पीसीओडी के पेशेंट में ये होता है कि उनका वो जो एग है वो रिलीज नहीं होता है, वो बाहर नहीं आता है, वो बाहर न आने जाने की वजह से मोतियों जैसी, मालाएं जैसी ओरी में सिस्ट दिखती है, छोटी-छोटी सिस्ट होती है, और बाहर न आने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती है।
0: जी, तो उस सिस्ट का इलाज कैसे किया जाता है, क्या ऑपरेशन होता है या दवा?
1: वो सिस्ट तो नेचुरल सिस्ट, मेरे जैसे बार बार बोला है कि वो अच्छे से डाइट, एक्सरसाइज, पहले नेचुरल वे से कंट्रोल करते हैं, नेचुरल वे से नहीं कंट्रोल हुआ तो मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं, नहीं हुआ तो सिस्ट का ड्रिल होता है, ड्रिलिंग लैप्रोस्कोपी से, सर्जिकल प्रोसेस है।
0: जी, तो उसका कोई खतरा नहीं?
1: नहीं, उसका कोई खतरा नहीं, सर्जिकल होता है और मेडिकली वो होता है ठीक ठाक।
0: जी, अब बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
1: सुरमई अखियो।
0: सुरमई अखियो में
1: नन्ना मुन्ना सपना,
0: सुंदर गाना, सदमा फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: ये गाना हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया और डॉक्टर आशा लता विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर, हमें बताइए कि आपने इनफर्टिलिटी का जिक्र किया था कि पीसीओडी के कारण इनफर्टिलिटी होती है, तो उसके तो बहुत सारे इलाज आजकल संभव है। अखबारों में विज्ञापन आता है कि इतने हजार में आप आईवीएफ तकनीक से बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आईवीएफ तकनीक के बारे में बताइए किस तरह से वो बच्चे का जन्म होता है, और हमारे बहुत सारे श्रोता जो गांव में भी हैं जिन्हें नहीं पता उनके लिए भी बताइए, और कितना टाइम लगता है, कितना रिस्की होता है।
1: तो पेशेंट जिसे इनफर्टिलिटी उनको डिटेक्ट हुआ, चलो तो डायरेक्टली आईवीएफ नहीं करना चाहिए और करते भी नहीं है, उनको प्रॉपर नेचुरल वे से ट्राई करते हैं और फिर इनफर्टिलिटी जर्नी किसी को नहीं होना चाहिए, इतनी सफर होती है पेशेंट उसमें बहुत सारे, तो नेचुरल ट्राई करते हैं, नेचुरल ट्राई नहीं हुआ तो डॉक्टर मेडिसिन देख के ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा है और फिर आईयूआई का सेटिंग करते हैं। आईयूआई भी नहीं हुआ तो
0: आईयूआई क्या है?
1: आईयूआई है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं इसको, डायरेक्टली यूटेरस में सीमेन डाल देते हैं। आईयूआई जब करते हैं कि जैसे स्पर्म काउंट कम हो, उसकी मोर्टेलिटी कम हो और स्पर्म काउंट जीरो भी हो, एजोस्पर्मिया उसको जो बोलते हैं, तो डोनर से बोल लेते हैं, लैब में ये सब किया जाता है
0: और लैब से भी डोनेट,
1: हाँ डोनर कर देते हैं, और डोनर को पता नहीं रहता है, पेशेंट को पता नहीं रहता, ये सब बहुत ही लीगली होता है, बहुत ज्यादा लीगली होता है। और आईयूआई के जैसे परसेंटेज सक्सेस रेट बहुत कम है, 5-7% इतना ही सक्सेस रेट है, बहुत ज्यादा सक्सेस रेट कम है, और फिर नहीं आईयूआई हुआ तो वो फॉर आईवीएफ। आईवीएफ के तरफ जब जाते हैं तो आईवीएफ क्या होता है, तो आईवीएफ में ओवम पिकअप करते हैं फीमेल का,
0: वो जो प्रेग्नेंटली,
1: हाँ

0: सिर्फ बीच अच्छा, हाँ उसमें सब मेडिसिन पहला देखकर उसको मैच्योर करते हैं और वो पिकअप करते हैं, और स्पर्म तो लैब में उसको एम्ब्रियो बनाते हैं, उसका एम्ब्रियो बन जाने के बाद में यूटेरस में
1: तो ट्रांसफर करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पीरियड्स के किस दिन से शुरू होता है ये प्रोसीजर?
0: हाँ, पीरियड से सेकेंड थर्ड से स्टार्ट हो जाता है प्रोसीजर। हाँ। फर्स्ट तो इंजेक्शन मेडिसिन और फिर बाद में ओम पिकअप करते हैं जब मैच्योर हो जाता है श्री बीज अंडा, और फिर बाद में
1: तो कई बार कपल जो पति पत्नी होते हैं जाते हैं डॉक्टर के पास, उनको घबराहट भी होती है कि ये क्या प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि कैसे होता है, क्या जैसे महिलाओं के गर्भाशय से जब अंडे रप्चर होते हैं वो निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, उस समय कैसे फिर उनको कोई तकलीफ तो नहीं होती है?
0: वो थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर रहता है। हाँ। तकलीफ तो होती है उनको,
1: एनेस्थीसिया वगैरह देना?
0: एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं रहती है, और स्पर्म तो ऐसे ही लैब में कलेक्ट हो जाते हैं और उसका एम्ब्रियो बनाते हैं लैब में।
1: तो फिर इसमें किसी तरह का खतरा कोई रिस्क नहीं होता है?
0: नहीं, अभी तो सब लैब टेस्टिंग होता है, पूरा सब लीगली प्रोसीजर्स होता है, खतरा कोई नहीं होता है।
1: कितने साइकिल में ये संभव हो पाता है, डॉक्टर के पास कितनी बार जाना पड़ता है?
0: वो बोल नहीं सकते, कभी वन साइकिल में हो जाता है, कभी सेकंड साइकिल में, कभी थर्ड साइकिल में भी हो जाता है, वो बोल नहीं सकते, कभी फेल भी हो जाता है। लेकिन आईवीएफ जो फेल हो गया वो लास्ट है
1: जी,
0: लास्ट टप्पा है। आईवीएफ फेल हो जाने के बाद में तुम नेचुरल वे में नहीं आ सकते।
1: जी जी। तो पीसीओडी के कारण क्या ये भी होता है कि मेनोपॉज जल्दी हो जाए या फिर बहुत देर से हो, ये समस्या भी होती है?
0: हाँ, होती है। पीसीओडी में पीरियड से ही रेगुलर रहते हैं और ट्रीटमेंट नहीं किया तो मेनोपॉज ही हो जाता है। कभी कभी दवाई लेके ही पीरियड आता है
1: जी,
0: ये भी होता है
1: जी। तो इसकी क्या वजह है कि नींद की कमी?
0: हाँ, नींद की कमी, डाइट और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस।
1: कई बार हमने देखा है कि महिलाओं में ब्लीडिंग ज्यादा होती है और कई महिलाओं में बहुत कम
0: हो जाती है,
1: और कुछ महिलाओं को दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी क्या वजह होती है?
0: वो जेनेटिक फैक्टर भी रहता है, कभी कभी दर्द होता है, एनर्जिया बोलते हैं उसको, और डाइट का भी इफेक्ट करता है वो, और एक्सरसाइज भी नहीं होती है तो होता है। जो महिलाएं एक्सरसाइज करती है, योगा करती है, काम करती है, उनको नहीं इतना कुछ होता है।
1: तो
0: जो महिलाएं बहुत सुख वस्तु है, कुछ भी नहीं करती, योगा भी नहीं करती है, तो उनको ये सब पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज पेनफुल होता है।
1: तो ये गंभीर रूप कब ले लेता है?
0: इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये गंभीर ही रूप लेता है।
1: क्या कुछ खतरा होता है?
0: हाँ, यूटेराइन कैंसर भी होता है, एंडोमेट्रियम कैंसर, ओरीज का कैंसर हो सकता है बाद में, और ये सब इफेक्ट करता है बहुत ज्यादा।
1: तो क्या इसके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध है कि इससे?
0: वैक्सीन उपलब्ध है लेकिन उसका सक्सेस रेट कितना ये पता नहीं है।
1: और कई बार महिलाओं के गर्भाशय में छोटी मोटी गांठ होती है, कई बार फाइब्रॉइड्स को भी लोग गांठ समझ लेते हैं और कैंसर का डर पैदा होता है, तो ऐसा कहां तक सच्चाई है इसमें?
0: सभी गांठें कैंसर की होती है ऐसा नहीं है
1: जी,
0: कभी कभी ये पीसीओडी की तो सीज पानी जैसे होता है उसका
1: जी।
0: हाँ, कभी कभी हेमोरेजिक होती है, खून भी रहता है उसमें, हेमोरेजिक सिस्ट भी होता है,
1: मतलब पानी
0: सिस्टिक
1: हाँ
0: होता है, और कभी कभी हेमोरेजिक भी होती है,
1: यूरिन के रास्ते यूरिन पानी आता है ऐसा?
0: हाँ, वो अलग चीज है, यूरिन के रास्ते जो सफेद पानी है तो व्हाइट डिस्चार्ज होता है, वो इन्फेक्शन के कारण हो जाता है
1: जी।
0: हाँ,
1: तो उसका क्या इलाज है?
0: वो तो क्लीनिनेस और फिर थोड़ा एंटीबायोटिक और सभी देख के वो क्लियर हो सकता है
1: जी। तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए?
0: ये रात भीगी भीगी,
1: ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, चोरी चोरी फिल्म का गाना है, सुनते हैं ये गाना।